उसके फजल से रोजी तलाश करो, बेशक वो तुम पर मेहरबान है। और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है, तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाती हैं। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो। और इंसान है ही ना शुक्रा, क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर संगरेजों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ। या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफा समंदर में ले जाए, फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफर के सबब तुम्हें डुबो दे, फिर तुम उस मामले में अपने लिए कोई बाज पुरस करने वाला ना पाओ।

0: दस्तगीर प्रोडक्शन।
1: पहजो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez Aram Mask.
0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fateh Naam Lekar Talab Kijiye.
3: Sa ja ek tarfa kadam army kanun ji bhankadiya hai neda kadam Kashmir je kanuni haisiyat khatam nata kare sagan. 7 saal guzran bawajood Kashmiri awam jo azam kamzor na hai thyo Pakistan Kashmiri awam je ikhlaqi siyasi hai safarti himayat jari rakhando. Wazir Azam Shahbaz Sharif chawa hai ta 5 August 2019 te Bharat Kashmir je aaini hai kanuni haisiyat tabdil karan ji koshish kai. भारत जा अड़ा एक तरफा कदम आलमी कौन सलामती काउंसिल जो ठहराव जी भनकड़िया हैं दखण एशिया में अमन इस्तकाल लाए कश्मीर मसले जो हल जरूरी है पाकिस्तानी हुकूमत है कौम कश्मीरी आवाम सा गद बिठल है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फिजाया बहरिया जे सरबरान जो योम इत्साल ते वलारन कश्मीर जे आवाम सा वधी जो इजहार हथियार फौज जो जम्मू कश्मीर जे आवाम सा यक जेते जो इजहार वलारन कश्मीर में भारतीय फौज जे घेराव इंसानी हकन जे संगीन भनकड़िन ए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज जे कब्जे के गणती जे इजहार एसपीआर मौजूद कश्मीर मसले जो हल कश्मीर जी ख्वाहिश ऐं गडियल कौमनि जी सलामती काउंसिल जो ठहराउ मुताबिक़ हुजणु घुर्जे पाकिस्तानी अवाम हथियारबंद फ़ौज भारत जे गैर क़ानूनी कब्ज़े हेठि जम्मू ऐं कश्मीर जे शहीदनि खे भरपूर ख़राज अक़ीदत कनि था भारतीय चिट ॾियारींदड़ बयान ऐं जहिराणो अमल खिते में अदम इस्तक़ाम जो सबबु बणिजी रहियो आहे पाकिस्तानी अवाम ऐं पाक फ़ौज कश्मीर जी आज़ादीअ जे जाइज़ ऐं हक़ीक़ी जिदत में कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल आहे 5 August 2019 ते भारत कश्मीर जी आईनी हैसियत ख़त्म करे आलमी कानून जी भनकड़ी कई योम इस्तेसाल कश्मीर ॾखण एशिया जे तारीख़ जो कारो ॾींहुं आहे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो योम इस्तेसाल कश्मीर जे मौक़े ते पाम संदसि चवणु आहे त कश्मीरी अवाम गुज़िरियल केतिरनि ॾहाकनि खां पंहिंजे हक़ ख़ुदि इरादियत लाइ बेमिसाल कनि खां पंहिंजे हक़ ख़ुदि इरादियत

नवन सूबन जो वडो हामी निकतो दिफाई पैदावार वारे वफाकी वजीर रजा हयात चयो आहे त इंतजामी यूनिट सां गवर्नर सां हालतूं बहितर थियण सां गॾु वफाक वधीक मज़बूत थींदो। वज़ीर आज़म तोणे मोहसिन नकवी केॾांहुं बि न पिया वञनि, शहबाज़ शरीफ़ ई नवां सूबा ठाहींदो।

आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। आप सुन रहे

0: FM 88।
1: जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
2: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप।
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
2: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप।
1: जुड़ियों चायों की महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
2: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप। गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अगर खूबसूरती खपे तो आर्ट्स अपनायो।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ्फुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: गाडो सुठो
3: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: अंदाज और नई ताजगी अडी पंजे वेजे स्टोर ता आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐ पंजे खूबसूरती के जो नो रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
1: आप सुन रहे हैं
2: GAF
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya jo show. National Pakistan.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अची चुका आयो असाजी प्रोग्राम जो सवाल है त पाकिस्तान जो कौमी गुल चमेली है उनके बे कड़े नाले से सदे वो है तो तक सवाल जो सही जवाब असने सेंड कर एस एम एस जरिए एस एम एस कर आसान तरीको है मोबाइल के राइट ऑप्शन में वो उतने अवं एल आर के लिखी स्पेस दई पाँ नालो गोठ जो नालो ए सवाल जो सही जवाब लिखी कर ट्रिपल 81 से सेंड कर सोता साई जहाँ तुम फेसबुक की आई डी GFM88 की आई डी यानी जो फेसबुक जो पेज असो ते भी पाँच सवाल जो सही जवाब मोकिले तक सवाल जो सही जवाब मोकिले मोबाइल नंबर से जहाँ असाजी स्टूडियो में आन है असो नंबर है 0332-13-22-88। साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं जज़्बात हिकु अहिड़ी कैफ़ियत आहे जंहिंमां सिर्फ़ु नुक़सानु हासिलु थी सघे थो छो त जंहिं वक़्तु बि जज़्बात इंसान मथां हावी थी वेंदा आहिनि तंहिं वक़्तु इंसानु उभरो थी पवंदो आहे ऐं उभराए में अहिड़ा फ़ैसिला थी पवंदा आहिनि जंहिंजा नतीजा सुठा न आहिनि निकिरंदा। दुनिया जा सभु ॾह ऐं अकाबर हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त जेकॾहिं को माण्हू जज़्बात में हुजे त उन खां का बि राय न वठिजे उन सां को बि फ़ैसिलो उन खां न कराइजे। नफ़्सियात जा माहिर चवनि था त जज़्बात जो ॿियो नालो चिरैप आहे छो त चिरैप वारे चिरैप अहिड़ी कैफ़त आहे जंहिंमें न नफ़े जी ॼाण पवंदी आहे न नुक़सान जी ॼाण। तंहिं करे हरदम पंहिंजे जज़्बात ते कंट्रोल करणु घुरिजे ऐं कॾहिं बि उन कैफ़ियत जी ताबियो न थिजे पर जज़्बात खे पंहिंजे हुकुम हेठि रखिजे जंहिंमां असांखे पाण खे फ़ाइदो मिले।

साईं मुंहिंजा अलाह साईं जा अहसान मालिक जा कुर्ब कुदरत पारां ज़बान जहिड़ो बेबाह तोहफ़ो अलाह साईं अता कयो आहे ऐं ॻाल्हाइण लाइ पंहिंजो तमामु बहितरीन ज़बान जहिड़ो तोहफ़ो ऐं कननि जो तोहफ़ो मिलियो त ॿुधो ऐं सुठियुनि ॻाल्हियुनि ते अमल बि करियो। पराई पचार खे हिकु कन खां ॿुधी ॿिए कन खां कढी छॾियो ऐं अखियुनि जहिड़ी नेमत ॾिनई त अखियूं खोले ॾिसो, सच खे सुञाणो, सूंहं जा साथी बण जो कुदरत जे हुसन जी वाखाण करियो। अखियूं जेकी ॾिसण सां गॾु ॻाल्हाईंदियूं बि आहिनि, अखियूं जॾहिं ॻाल्हाईंदियूं आहिनि तॾहिं अखियूं ई उहे ॻाल्हियूं सम्झंदियूं बि आहिनि। अखियूं प्यार मुहबत जा सनिहा ॾियण लाइ बि ॻाल्हाईंदियूं आहिनि त कावड़ ऐं किरोध जो बि इज़हार करे वठंदियूं आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं त लफ़्ज़नि जा तीर बि वसाईंदियूं आहिनि ऐं अखियुनि जूं सदाई सम्झ में न ईंदड़ ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। तॾहिं त चयो वियो आहे त अखियुनि खे आहिनि अजब जहिड़ियूं आदतूं, छा साईं जो बेत आहे त अखियुनि खे आहिनि अजब जहिड़ियूं आदतूं, सूर पराए साथ जा वञो विहाइनि, उते लहूं लाहिनि जिते हाजत नाहे हथियार जी।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GFM 90.8।

0: It's time to commercial break. Fakiri Neem Prickly Heat Soap. जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया
1: हीट सॉप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और कर्मी दानों से हिफाजत के लिए
1: फकीरी नीम प्रिकली
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और कर्मी दानों से हिफाजत के लिए
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: बहजो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
4: GFM 90.8

जी हाँ समेन प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां दोस्तन जा नाला जिन जो अवां के इंतजार होंद आहे त असां जो जिन भी दोस्तन सवाल जो सही जवाब नो आहे उन में पहिरे नंबर ते असां जो दोस्त आहे इकबाल कुहारो अलाहाबाद मोहल्ले लाड़काणे खां जंहिं पहिरे नंबर ते सवाल जो सही जवाब नो आहे असां दोस्त खे वधीक मुबारक बि ॾियूं पिया जो सभिनी खां पहिरियां असांखे दोस्त इकबाल कुहारो अलाहाबाद मोहल्ले लाड़काणे खां जवाब ॾिनो आहे बाक़ी सभिनी दोस्तनि जवाब ॾिनो आहे कुझु ग़लति बि ॾिनो आहे ऐं कुझु दोस्तनि उको धुको बि आयो आहे जंहिंमें इकबाल लाशारी आहे मीरपुर झलोरी मीरपुर ख़ासि खां ऐं अब्दुल ख़ालिक लाशारी बि आहे ऐं यासमीन मलिक बि मीरपुर ख़ासि खां आहे ऐं फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां हाजी सोरा मंगरियो ॻोठु सचरिणो मंगरियो लॻे बकापुर खां जंहिं उको धुको हुयो आसपली चाचड़ लाड़काणे खां अज़ीज़ सोलंकी भुट्टो सोलंकी नूरमन सोलंकी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मीरपुर ख़ासि खां जंहिं उको धुको हुयो त सही जवाबु मोतियो हुन लिखियो आहे जेको ग़लति आहे ऐं मोहम्मद हुसैन खोसो कश्मीर खां ऐं बाबू अदील अबड़ो घोटकी खां ऐं पुलिस जो जवान शाहबान चन्ना घोटकी खां ऐं ॻोठु सुमराणी ईंदड़ खां लॻे पनो वाकिल खां हाफिज़ अमीनुल्लाह हैदरी ऐं हाफिज़ नईमुल्लाह काज़ी बि सही जवाबु ॾिनो दोस्तनि जी वॾी महिरबानी क़ुर्बान ख़ासि के अली जंडोमरी खां नूर हुसैन तुनियो बदीन खां सोमिर अली लाड़काणे खां अता हुसैन रियाज़ भट्टी ऐं ममन ख़ान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार एजाज़ कुंभार हालेपुटा स्टाफ मीरपुर ख़ासि खां अब्दुल्ला चन्ना कुरेशी ॻोठु सखर खां आमिर हुसैन जागीरणी बलोच लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां ऐं समिन ॻोठु मोलेरिणे माशी लॻे वॾनि वारनि खां ज़मीर हुसैन सोलंकी मुख्तियार अली सोलंकी ज़हीराबाद सोलंकी ऐं वफ़ा हुसैन सोलंकी ॻोठु कंगन खां गुलाब ख़ान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर ॻोठु हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई ॻोठु मोहम्मद क़ासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर ऐं अहद अकबर शादाब चांडियो ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टॉप सखर लॻ सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो ॻोठु यार कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़ौजी इरशद अली महेसर ऐं फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई ऐं निसार अली जतोई त सभिनि दोस्तनि जी वॾी महिरबानी लख घुर्ब ऐं दोस्तनि ताईं आख़िरी कलाम पचायूं पिया दोस्तनि जे नाह कयूं पिया गॾिजी पिया इंजॉय कयूं।

जी हाँ, समय प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पहुंचे पे पाजे पुजानी ते हयाती रही ते इंशाल्लाह वरी वहां सा मुलाकात जरूर थी तेस ते पाजे मेजबान नेमतुल्लाह जुने जो के दींदा इज्जत अल्लाह दींदा।

0: ख़ास वारा
1: अपनायो आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर का रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में डार्क स्पॉट्स एक
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छोना तो करी
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
3: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए
3: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
2: इस्तेमाल किए कजे
3: मुतासिर थेल हंद ते डी में बखा ट्रे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो जी हां फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर था नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट

0: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
1: GFM 90.8 हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आज जिनका बर्थडे है उनको कहेंगे मने मने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा

हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझवाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना जो कि हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि अगस्त का मंथ है और आज है 5 अगस्त, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 14 अगस्त भी आएगी। तो अब से लेके 14 अगस्त तक हम प्रोग्राम में जब भी पहला गाना इंक्लूड करेंगे वो हम डेडिकेट करेंगे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को, जिसके लिए हमारी तमाम अनाएं, वफाएं, जफाएं सब कुछ कुर्बान है।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियो चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सुनी।

0: 5 and phone number 0744057 99.
1: दुनिया में असान जे मुल्क में शुगर जो मर्ज तेजी सां वधी रहयो आहे
2: इन जा मुख्य कारण मौरूसी मोटापो वर्जिश न करण गैर मयारी غذا जो इस्तेमाल वगैरह आहिन शुगर जे मर्ज जो खास खास अलामतूं ही आहिन बार बार पेशाब जो अचण अचानक वजन घट थी वञण भुख घणी लग

बीठल फसल पाड़ी हेठ वारे ब्रांच के आरडी 170 वटा 200 फुट जो गारो पैजी वयो। पानी गई नवाज जागीरानी तरफ वधण लगो। घारे जो बुधी गोठाणा घारे वारी हंध पहुंची वया। गोठाणन जो चवण है तेतला बावजूद आपाशी अमलो न पहुंचण सबब असो फसल गुडी वयो।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में टे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां

आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

لعبت. हमारे इलाके के हिसाब से ना इसके स्पेसिफिक होते हैं, जैसे जहाँ पर पानी बहुत वाफर मिल्टार में होता है वहाँ पर हम जो है उस इलाके के हिसाब से ट्रीज लगा सकते हैं। आप जैसे बलोचिस्तान वगैरह है जहाँ पर पानी इतना, और जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर पानी इतना अवेलेबल नहीं है, उस हिसाब से उधर की जो लोकल स्पीशीज है उन्हीं को हमें वो एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि जो है

0: नहीं, जो ट्रीज है वो भी एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा ये जो इरेगुलर अर्बनाइजेशन है जो हम जो फॉरेस्ट को काट हम अपनी आबादी के लिए, आबादी जो बढ़ती जा रही है उसका भी एक लिमिटेड रखना चाहिए, ताकि जो टेम्परेचर है उस पर हमारे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो कम हो।
1: बिल्कुल, और इसी तरीके से मज़ीद और आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जिस तरह आपने बात की अर्बनाइजेशन की, तो आप हमें ये बताइए, क्या गैर मंसूबा
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
5: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जे रुसार. आए आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जो कि रहने वाला है. And this is the beautiful song by Atif Aslam from the album Subah Aaye Na. And the song called Hoon Ishq Mein. For the very first time.

साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ मूव करते हैं जो कि मुझे बहुत सारे आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं. हमें मैसेजेस बहुत सारे रिसीव हो चुके हैं, कमेंट्स बहुत सारे रिसीव हो चुके हैं. तो हमें मैसेज कर दिया है जी मिठड़ी रुखसार, अस्सलामुअलैकुम सफदर बलोच मोरो से. शेर लिखते हैं कि अर्ज करता हूँ तोड़ना ही है अगर दिल तो मोहब्बत से नफरत से नहीं, क्योंकि आगे मिसिंग पार्ट है. नहीं सच में मिसिंग पार्ट है.

अच्छा पाकिस्तानी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी सॉन्ग है। ओके इसको हम सर्च करते हैं, ये ऐसा कैसा सॉन्ग है ये। ठीक है।

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز اچھن وارن کا اپنا شہر اپنا گھر مورو اور مورو کی آواز جی ایف ایم 88
1: अच्छन वारन खां परेशान आयो पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज ज़ाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रतु अचणु सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हरछंछर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं इदनान दवाखाना न त अछी मस्जिद दर्श रोड मोरो राब्ते लाइ फोन करियो 0301 469 निजात बवासीर कोरस सुकून एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम
0: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज रुखसार आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और हम लेने जा रहे हैं आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स. चेक करेंगे कि कौन है कहाँ से और लास्ट लाइन में हम लास्ट लकी कॉलर्स को एंटरटेन करते हैं. सो हियर कम्स द कॉलर. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? ओके जी, शिकारपुर से जफर. आपकी कॉल कट गई है. 03001-34-88. नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहां से?
1: जी मैं वकार जतई जीत के लाल का नाम जरूर साथ.
0: ओके वकार भाई, मुझे बताइए आज की अच्छी बात.
1: आज की अच्छी बात ये कि हमारे लड़का ना मौसम भी अच्छा है और आपका शो भी बहुत अच्छा है. प्यारा लाड प्यार से आपका शो सुनते
0: शो सुनते हैं. ओके ये अच्छी बात है. लालकाना का मौसम अच्छा है?
1: बिल्कुल अच्छा है. ऐसी ठंडी हवाएं चल रही हैं, दिल है कि मेरा दिन में भी रात जैसा है.
0: अरे वाह क्या बात है जी, क्या बात है. बस फिर मौसम एंजॉय करें आप. और मुझे ये बताएं कि और कुछ कहेंगे
1: जी? और ये कहेंगे गाना सुनाओगे? नहीं,
0: गाना सुनाना है. वैसे गाना सुनाने वाला सेगमेंट तो खत्म हो गया है.
1: नहीं नहीं, वैसे आप सुनाएं तो सुनाए, लेकिन नहीं है तो नहीं है.
0: सुनाए तो सुनाए, नहीं है तो नहीं है. चले बता दे कौन सा गाना है.
1: गाना ये मानवी जा तू मेरा दिल न जला परदेसी, आज की रात न जा परदेसी. साफराज ने गाया.
0: चले मैं इसको सर्च करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ. ठीक है
1: ठीक है. तो मौला आपको खुश रखे. गाना प्ले कीजिएगा थोड़ा ही सही.
0: अच्छा ये किस सिंगर का गाना है?
1: ये अल्ताफ राजे का है. मानवी जा तू मेरा दिल न जला. पाकिस्तानी.
0: तू मेरा दिल न जला अल्ताफ.
1: मान भी जा तू मेरा दिल न जला.
0: मान भी जा तू मेरा दिल न जला है ना? चले मैं देखती हूँ जी ये कैसा गाना निकल के आता है. ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. और इसी के साथ वकार भाई का गाना तो हम सर्च करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्ले करेंगे एक और.

रखी जी, फाइनली इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत. और वकार भाई आपका गाना मुझे मिला नहीं है, जो हम लास्ट में एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करेंगे. और के साथ हम प्रोग्राम को यहीं पे रैप अप करेंगे. एंड हियर कम्स अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग. और इसी के साथ फाइनली मैं लूंगी आपसे इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. मेरी आपसे चिटचैट होगी इंशाल्लाह कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे. सुना मत भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: टॉस, एलर्जी, नजलो, जुकाम, दम, सहको, खंग, टीबी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, फालिज, जोड़न, संधन, कुनरग, आई अध मथे जो सूर, गुदूद, पिते, मसाने, गुर्दे जी पथरी, आई नक जी हड्डी जो होम्योपैथिक तरीके मौजिब इलाज कर वने थो। क्लिनिक जुमे का अरबा डी ताई सुबह जो 10 बजे का शाम जो 4 बजे ताई खुलियल रहंदी आहे। नोट, जुमो, छंछर आई आचर ते आयल मरीजन जो चेकअप फ्री में कयो वेंदो आहे। एड्रेस, हैदराबाद होम्योपैथिक क्लिनिक, नस्त पुराणो यूटिलिटी स्टोर, दादू रोड, मोरो।
1: वधीक राबते ऐं मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर
2: 0325। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जनाब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले जो कि बहुत ज्यादा जरूरी बात हो जाती है, क्योंकि अगर आप जानेंगे अच्छे तरीके से उसके बाद ही आप लोगों को पता होगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट और क्यों इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो, तो हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट्स है और हर तरह से आप लोगों के ब्यूटीफुल से चेहरे को मजीद प्यारा, बहुत खूबसूरत और हसीन और पुरकशिश बनाने के लिए ही तैयार किए गए। तो आपकी स्किन चाहे किस भी तरह की हो, आप मर्द हज़रात हैं, ख्वातीन हैं, रेडी हो जाइए जनाब खूबसूरती की दुनिया में कदम रखने के लिए और हमारे साथ साथ जो है ना वो साथ निभाने के लिए। ऐसे के साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि प्रोग्राम में सिर्फ आप लोगों के लिए व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बातें नहीं होंगी, बल्कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी सुनाएंगे, आप लोगों के साथ मस्तियां भी करेंगे और आप लोगों के फीडबैक्स भी शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाले मजे करेंगे और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन अपना भी जरा तारफ करवा लेते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जी एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मुखातिब है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो चलिए जी जल्दी जल्दी से ब्यूटीफुल बनते जाइए और यहाँ पर जरा बताते जाइए कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है और कहाँ कहाँ से अपनी खूबसूरती की दुनिया में जो है ना वो जरा हाजिर होने के लिए आ चुका है। और इसके अलावा जरा आप अपने हाल चाल भी बताते जाइए सभी लिसनर्स, अंत की हालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजा दें, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे। इन 2 घंटों में हम इनिशियली बातें करने वाले हैं और इसी के साथ साथ यहां पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पे 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पे 440 उल्की स्माइल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुन लेते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होने वाले हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: फिर जी क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कसीदा जो कि आप यहाँ पर सुन रहे थे और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंड डीज़ स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज़ स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. यहाँ पर आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जनाब, अपने होने का एहसास दिलाएंगे, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शामिल प्रोग्राम कैसे होंगे वो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है. तो आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि भाई हमने कुछ दिन हो चुके हैं कि हमने कॉल ही नहीं ली है, समझ रहे हैं. तो कॉल ही नहीं ली है तो हम ये चीज जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे कि आप लोगों के लिए ना हफ्ते में एक या दो दिन हम पूरा प्रोग्राम जो है वो कॉलर्स के नाम डेडिकेट किया जाएगा, यानी कि उसमें पूरी जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर कॉलें ली जाएंगी और जो लोग बेचारे मैसेज नहीं कर सकते, कॉमेंट नहीं कर सकते, तो वो हमें इजिली कॉल कर सकते हैं. और कॉलर्स के साथ तो वैसे भी गपशप बड़ी अच्छी हो जाती है कभी कभार हर वक्त नहीं, कभी कभार. तो बिल्कुल अगर आप भी इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ जी हफ्ते में एक दो मरतबा कॉलें तो होनी चाहिए और एक पूरा प्रोग्राम जो कि कॉलर्स को डेडिकेट किया जाएगा, यानी इसमें आप लोगों की सिर्फ कॉलें पिक की जाएंगी. हाँ मैसेजेस कुछ पढ़े जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लूंगी, लेकिन ज्यादा जो हमारा ध्यान होगा वो कॉलर्स की जानिब होगा. तो आज के प्रोग्राम में आप लोगों की कॉल्स पिक की जाएंगी और आज के प्रोग्राम में जो मैं कॉलें लूंगी तो कॉलर्स के लिए एक सेगमेंट होने वाला है और सेगमेंट होगा गैस द प्रोडक्ट. यानी कि हम इतने दिन हो चुके हैं लिसनर से ये नहीं जाने कि भाई मैं जरा आप लोगों को कोई चीज बताऊंगी, जैसे कि आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में तो मैं पहले से बहुत कुछ बता चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें जो कि आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में. तो आज ऐसा होगा कि मैं आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी चीज पूछ लूंगी और आपने गेस करना है कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, समझ रहे हैं. अगर आप कॉल पर आएंगे मैं आप लोगों से कोई भी ऐसी चीज पूछूंगी जो कि हाँ रिलेटेड होगी प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है. तो आपने गेस करना है कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ. तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट होगा जो कि आप लोगों ने गेस करना होगा. तो जो लोग सही गेस करेंगे जाहिर सी बात है उनको विनर करार दिया जाएगा. और उसके अलावा ये आज के प्रोग्राम का सेगमेंट होगा गेस द प्रोडक्ट. और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो क्या करेंगे जी, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. आप सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा. जल्दी से पेज के ऊपर आइए और वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. जल्दी से बताइए आप कौन हमारे साथ मौजूद है, कहां से सुन रहे हैं. तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और जल्दी जल्दी से पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं. और जनाब उसके अलावा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज़ स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट वो भी आप मुझे बताएंगे. ऐसे के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं. अच्छा लाली हमारे साथ मौजूद यहाँ पर कहती है अस्सलाम वालेकुम, आज जाने की आयो, उम्मीद है ठीक हो ना जी, मासफा ठीक दाम उदय की आयो. अखलाक बलोच हमारे साथ मौजूद है, हेलो अखलाक भाई. सादिया अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं. उनके अलावा अली मोहम्मद हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते क्यू सिस्टर आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ प्यारे भाई जान. और आशिक अली जलबानी हमारे साथ है, हाय स्वीट आरशे, हेलो टू यू. सादिया कहती गाना सुनाइए, मैं कोशिश करती हूँ गाना लगाएंगे. और कहती यहाँ पे येस्टरडे आपको बड़ा मिस किया था, अल्लाह जाए बुदा. चाचा खालिद कहती है Assalamualaikum beta, how are you? Oh fine, yes, I'm good. How have you been? अच्छा लाली कहती मिठो आवाज प्यारो अंदाज मथा मेरी नखरा आईनाज वल्ला माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. सुमरो साहब कहती हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, तो खुशियां जी मां खुश ताम दायो. और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदास स्मार्ट हाजरा, छा खाइंदो पीएंदो गरम थदो, अज अमा थकजी आया हुंदा छुट्टी करे, थकजी त कीअं छुट्टी ते माण्हू रेस्ट करे ईंदो आहे कि थकजी ईंदो आहे. ये चो था जो मां सफा रेस्ट वाले मूड में आया. और ऐसे नारबानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एंड मौलाना सलाम मदद कहते हैं. ओ माई फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान, कैसी हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है? सब कुछ ठीक ठाक पांजी जगह ते ताम बुदा की आयो, ठीक ठाक आयो मजे में, आई केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया. उनके अलावा किशोर भाई कहते हैं कि जिंदा आई हूँ बाबा जिंदा, तू रोज रोज असां के मारण के चक्कर में छो हों न चक्कर में ना आया हूँ तो बस मुख्य खबर हुजन घुर्जे तो केर केर जिंदा आया ना तक धरती ते बोझ. अच्छा मोहम्मद जमान कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू यू सुंदर बुआ जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे भाई जान. और किशोर भाई कहते नन्ना सालों की कुछ गड़बड़ है, आप पहले बताया करें. नहीं मैंने पहले ही बताया ना, इसीलिए तो आते साथ ही बता दिया कि आज प्रोग्राम में क्या होने वाला है. और चाचा कहते हैं मैं कैसे कॉल सेगमेंट अटेंड करूं, मेरी तो कॉल पर बंदिश है, नहीं बंदिश आपकी कोई भी नहीं है, बस आप कोशिश करें, मैं आज पूरा जो है ना प्रोग्राम कॉल ही लूंगे तो क्या पता आपकी कॉल भी मिल जाए। मूसा कोरी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारे साथ अखलाक भाई कहते हैं कि हम लिखे पढ़े लोग हैं, हम नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, तो आप प्रोग्राम सुनिए। अच्छा हैप्पी गर्ल हमारे साथ है, रियल हैप्पी गर्ल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सुनूर जाने, क्या हाल है आपके, मैं भी आ गई आपकी प्यारी सी महफिल में, वेलकम कहते हैं हैप्पी गर्ल आपको। और नखा अलावा मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम बाजी, वाइट इश ब्यूटी क्रीम नाइस और सॉन्ग सुनाई शमन का केड़ा गजब बजा सिंगार गया थे, चलें चलें बिल्कुल भाई के लिए गाना लगा देंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ हैं। और ऐसे ही आप प्रोग्राम सुनते रहिए, प्रोग्राम की पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और उसके अलावा हम अभी यहाँ पर जा रहे हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना यही मार।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम एलोको बना रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम
3: परेशान है
4: अब दर्द को कहें अलविदा,
3: फकीरी डेक्स ऑइट

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

पता है कि मैं देखूंगी कि भाई आप लोगों को कितना पता है, कितने आप जो ना गौर से प्रोग्राम सुनते हो, कितना आप नॉलेज रखते हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड री स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो यहाँ पर कॉलें जो है ना वो मैं लूंगी, अभी स्टार्ट करेंगे. लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चलो कि यहाँ पर वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड री स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों से सवाल पूछूंगी. तो इससे भी ये चीज मालूम होती है अगर आप ओके जी, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सिटीज के अंदर अभी तक वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं. तो अगर आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं, ताकि ऐसा ना मुझे सुनने को मिले कि भाई जी असांजी त करीबी जनरल स्टोर से कौन मिले थो, बाजी असां वेंदासीं शहर त वठी ईंदासीं. अबा ईअं न कयो तव्हां हाणे थोरो मुल्क जेको आहे न तरक़ी कंदो वञे थो ऐं दुनिया लाइ किथे वञी पहुती आहे. तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था. उन जे लाइ तव्हां वटि नंबर आहे, ऐं नंबर अगरि ॿुधाया वञे त नंबर आहे, नोट कयो सभ खां पहिरीं. बिल्कुल जी, नंबर आहे 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 हाणे ही नंबर तव्हांखे डायल करणा आहिनि. हिन नंबर ते डायल करण खां फौरन बाद तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते ही तमामु प्रोडक्ट्स, यानी कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा. सो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि लॻाईंदा ऐं जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि लॻाईंदा, जेका तव्हांजी दिलि करे सो लॻायो बाबा. ही सफ़ा चवंदा न शक्तिशाली प्रोडक्ट्स अथव, ॾाढा पावरफुल आहिनि. अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते पहुची वेंदी. उन खां अलावा तव्हां जो जेके कॉल्स वठण मां हाणे स्टार्ट कयां थी, छो त अॼु जो जेको सॼो प्रोग्राम हूंदो कॉलर्स खे डेडिकेट हूंदो. बाबा कॉलर्स बि चवंदा था भाजी असां कहिड़ो तव्हांजो ॾोह कयो आहे, असांखे शामिल न आहियो कंदा प्रोग्राम में. सो बिल्कुलु अॼु कॉलूं तव्हांजूं वठूं था, पर तव्हां जेके फेसबुक ते माण्हू असांखे ॿुधो पिया, पोस्ट खे ज्यादा खां ज्यादा तव्हांखे लाइक ऐं शेयर करिणो आहे, ठीकु आहे. सो पैनल ते बि तव्हांजा मैसेजेस आहिनि ऐं कॉमेंट्स बि तव्हां कंदा वञो बाबा, पढ़ी वठंदासीं. हिकिड़ो मिंट मां मोबाइल खणी अचां, ईअं छो तव्हांखे छॾी वञा. ॿियो त भला तव्हांखे हिकिड़ो गानो ॿुधायां थी, हीअ सास तव्हां गानो बि ॿुधो ऐं प्रोग्राम आहे वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमालु कयो ऐं सोणा सोणा थी वञो.

कोई वात पटे छो तव्हां प्रोग्राम ॿुधंदा तव्हां बि कॉल कयो न प्रोग्राम में असां ख़बर पई त बाबा तव्हां खे केतिरी नॉलेज आहे वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में सो ओके असांजो कॉलिंग नंबर आहे 0332123221888

0: हेलो जी, सो हाणे कॉलिंग सेगमेंट स्टार्ट कयो वियो आहे. हाणे तव्हां कॉल करे सघो था. कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88. अच्छा, माना इहा ॻाल्हि आहे.
1: हाँ,
0: मतलब हफ्ते में एक दफा खड़ी हा. अच्छा, मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हांजे लाइ जेको सेगमेंट आहे उहो ॿुधो आहे प्रोग्राम जो? सेगमेंट इहो आहे त अॼु मां तव्हां खां असांजा प्रोडक्ट, त तव्हां ख़बर आहे न, वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. अच्छा, सो मां हिननि प्रोडक्ट जे बारे में का ॻाल्हि तव्हां खां पुछंदमि ऐं तव्हांखे हुनजो सही मूंखे जवाबु ॾियणो आहे. अच्छा, सो तव्हां खां जेको पहिरियों मां सवाल पुछंदमि इहो हूंदो त तव्हां मूंखे ॿुधायो ॿिनि ॾींहनि में रिज़ल्ट जेका कहिड़ो प्रोडक्ट ॾींदो
1: आहे.
0: ओके ओके, मूंखे ॿुधायो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा. ओके, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ, तव्हांजो मोहबत वारो प्रोग्राम ॿुधो पिया. भई मां चवां पहिरियों कॉलर आहे त हुन खां सोलो सोलो सवाल पुछां थी, पर ॾिठव ॾिठव ॾिठव. ओके जी, कॉलिंग नंबर 0332-1322-88. आजे दुक्का तो लगाया लेकिन वो गलत दुक्का था. नेक्स्ट कॉलर की जान बातें देखती कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: केयर मौजूद है? ओके मां ठीकु आहियां. तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो, अलहमदुलिल्लाह, ठीकु ठाक, मज़े में. मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधो पिया. सही वाह, सही वाह, वाह वाह वाह, मोरो में मतलब मिले थी. अच्छा, मां तव्हांखां सवाल पुछंदमि, हुन तव्हांखे जवाब ॾियणो आहे. सवाल इहो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको ॿिनि रातिनि में रिज़ल्ट ॾींदो
1: आहे.
0: ॿिनि रातिनि में रिज़ल्ट ॾे थो. रुगो ॿ रातियूं लॻाईंदा तव्हां सुहिणा थी वेंदा. वाइटेश लवली क्रीम, उहा त राति जो लॻाइण वारी क्रीम ई कोन्हे का, हुनखे त तव्हां ॾींहं जो बि लॻाए सघो था. अच्छा अच्छा, चलो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? जी जी, कहिड़ो? कहिड़े सिंगर जो गानो आहे इहो? चलो ठीकु आहे, मां कोशिशि कयां थी गानो हलाईंदासीं. थैंक यू सो मच, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई. वाइटेश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कंदा आहियो, पर तव्हां बि सवाल जो सही जवाब न ॾिनो. जेसि ताईं मूंखे हिन सवाल जो सही जवाब न मिलंदो, मां तेसि ताईं ॿियो सवाल तव्हां खां कोन पुछंदसि. जी जी, बिल्कुलु, तव्हां कॉल करे सघो था. तव्हां गानो बि ॿुधायो, तव्हांजी जेका दिलि चवे उहा तव्हां ॿुधायो, ऐं हुन खां अलावा मां सवाल तव्हांखां लाज़मी पुछंदसि. कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88. नेक्स्ट कॉलर, ॾिसूं केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे. हैलो हैलो. ओके, कॉल तो मिल गई थी, बात क्यों नहीं की? कोई शर्मीला इंसान होगा. बिल्कुल, सुना प्रोग्राम सुन रहे हैं. वाइटेश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. नेक्स्ट कॉलर की जाने बातें देखे कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी.
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो, केरे से सगन मौजूद है?
1: राहिला बतूल.
0: राहिला बतूल, किथा कॉल किया? कंबर खां राहिला बतूल फोन किया. छाला राहिला, खुश आयो?
1: कंबरा
0: कंबरा अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक ठाक आयो प्रोग्राम बुधो पिया
1: जी बाजी तवाने प्रोग्राम बुधाती
0: हम मां भी ठीक आया केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे पे राइला सुनी
1: न कयो आया तांदे शहर में ना
0: आई ली छो ना तांदे शहर में तां जेको नंबर बुधाइने प्रोग्राम उन ते डायल करी पांजे भी शहर में अवेलेबल करायो ना जे तां भी इस्तेमाल करे सको
1: बाजी मां मदन से ना गलांदी आ
0: चलो ठीक आए ता को पांजे भा के चो तो वो गाल है भाया था नी
1: जी जी आए मसाला
0: चलो मुखे यो बुधायो त तवा केडन दोसन की याद करो
1: बस्ता
0: ते सलाम दिन बस ओके थैंक यू सो मच राहिला तवा प्रोग्राम में कॉल के लाइस छो लोगो तवा सगा लाए प्रोग्राम में कॉल करना कयो बाबा ता जो पांजो प्रोग्राम आ है ओके जी सो नेक्स्ट कॉल जी तरफ अचू ही दिसू नेक्स्ट कॉलर केरे से सगड मौजूद है हेलो जी अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम आदि खुश जह के चंगी भली देर
0: सफा मजे में ता बता की आयो केरे से सगड मौजूद आयो
2: आदि आओ हाथ से हनी विरंद पे और से क्या बाजो गड़ी केरे मोहे दो पर जी अंदर त मो चिक मा पाजे पास देखो
0: वाह साईं वाह प्रोग्राम बुदो प्या
2: प्रोग्राम तो रोजाना बुधंदा आयो जरे कोडी अभी जो प्रोग्राम चालू जो तमा बुधो तमा बाकी फोन पे तुजो आज बुधो तम
0: अल्लाह फोन ते आज बुधो मुखे यो बुधायो तो तमा आज जो सेगमेंट बुधो आए तमा का सवाल पूछा
2: हां सवाल पूछो बकाज बाकी अला खैर करो ता के से साले जो मत नहीं बनो
0: सवाल यो मैं ता का पूछना तो मुखे बुधायो तो केड़ो प्रोडक्ट आ जको ता के बुधाइना जको बिन रातन में रिजल्ट दीदो आ
2: हां यो अग में तो बे होंदो पर हाने वरी अलाई करो ए सीसी के वाला चायो आ
0: हां मने अग में बियो हुंदो हाने वरी बियो आ
2: हाने वरी बियो आ जे में सी लगा हुंदो तो मालो हाने वरी बियो आ
0: अच्छा अच्छा अच्छा मुखे बुधायो त केडन दोस्तन के याद कंदो
2: हां याद त काफी दोस्तन के जते आवाज वने तो सबने के खोड़ सारा सलाम नाला खंदा दे प्रोग्राम ही पूरो एतरी संगत आ
0: वाह वाह चलो यो भलो कहे ता सबनी के सलाम दई छड्या
2: अच्छा सोंगड़ो को सुठो अदरी बुधराए
0: हाजिर हाजिर सोंगड़ो बुधराए ताई सुठो सोंगड़ो बुधराइंदा सी सही आ ओके थैंक यू सो मच प्यारा बादुआ में याद बिल्कुल सुना प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से हाँ जी सवाल जवाब वाकई भलो दिन अदे अं सवाल जो सही जवाब कौन मिलो है सो अस बी कॉल वेठूँ था दिसूँ था केरस सगड़ मौजूद है हेलो
1: हेलो
0: केरस सगड़ आ
1: राबिया
0: नादिया
1: राबिया
0: राबिया राबिया राबिया कितना कॉल कई
1: रोहिणी
0: खां राबिया छाला तानो खुश आयो
1: जी बाजी तां ठीक आयो
0: अल्हम्दुलिल्लाह सफा ठीक प्रोग्राम बुधो पिया राबिया
1: जी जी बाजी
0: अच्छा केड़ो प्रोग्राम बुधो पिया नालो अचे तो
1: डी आइसक्रीम
0: वाह वाह वाह वाह मुखे यो बुधायो सवाल पुछा मा तां खां राबिया
1: जी बाजी
0: सवाल पुछा तां खां
1: पुछ पुछ
0: मुखे यो बुधायो त केड़ो प्रोडक्ट आ जेको बिन रातन में रिजल्ट दे थो
1: डी आइसक्रीम बीटी क्रीम
0: केड़ी
1: डी आइसक्रीम
0: ओके जबरदस्त ता जो सवाल जवाब सफा सही आ ता बुधो हो या ता के बुधायो आ
1: ना ना बुधो
0: चलो मुखे बुधायो त तवा बे छा चवंदा
1: बस बाजी ता जो प्रोग्राम बुधाऊ
0: था ओके केडन दोस्तन की याद कंदो
1: माशाल्लाह सुठो आ प्रोग्राम बायो सुभाना हां ओके राइला राबेल
0: ओके थैंक यू सो मच राबिया तुम प्रोग्राम में कॉल कई मुख्य मुझो आवाज ही बुधरायन पया बाबा मुख्य मुझो आवाज बुधल आई तल ती कॉल मिली वने थी आई चलो सभी गालन जी कड़ी गाल राबिया असा के सही जवाब दिनो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका है वो बिन रातन में रिजल्ट देने वारो प्रोडक्ट आ यो तमा के मा खोड़ टाइम दफा बुधाए चुकी है सो यो तमा याद रख जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिन रातन में ता के रिजल्ट देती हाने असा बे सवाले तरफ भी मूव कना सी

0: कॉल ॾिसूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे. हैलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: केरु मौजूदु
1: आहे?
0: नालो ॿुधाइजो वराए पंहिंजो.
1: मोहम्मद अली जरार.
0: ओके, मोहम्मद अली जरार भाउ, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो?
1: मोहम्मद अली जरार.
0: ओके, ठीकु आहियो? प्रोग्राम ॿुधो पिया? वाह साईं वाह. मीरपुर ख़ासि में मिलनि था हीअ प्रोडक्ट जेके ॿुधाईंदी आहियां मां रोज़ प्रोग्राम में? अञा कोन था
1: मिलनि?
0: अच्छा, चलो असां अवेलेबल कराए वठूं था मीरपुर ख़ासि में. मूंखे ॿुधायो त तव्हां खां सवाल पुछां. सवाल इहो आहे त मूंखे ॿुधायो त एलोवेरा जेको आहे उहो कहिड़े प्रोडक्ट जे अंदरि एड थियल आहे? चलो मूंखे ॿुधाए कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? थैंक यू सो मच प्यारा भाउ. हां जी, अगरि समुझ में ॻाल्हि न अचे त बसि चई छॾींदा कयो. ओके, ठीकु आहे, ॿी ॻाल्हि कयो. सो मां त कोशिशि कई त मां सवलो सवाल पुछां. अदो पहिरियां ई लॻे पियो त ही सवाल जवाब न ॾियण जे मूड में हुयो. चलो ठीकु आहे, खैर आहे, असां तव्हां खां पुछंदासीं ॿियो सवाल. मतिलबु इहो ई सवाल ॿिए कॉलर खां, ॾिसूं था त केरु असां सां नेक्स्ट कॉलर मौजूदु आहे प्रोग्राम में. हैलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम, मां मोहम्मद सोलंगी बात कर रहा हूं.
0: मोहम्मद सोलंगी? अच्छा, किथां कॉल कई आहे? सखर से बात कर रहे हैं. मुझे बताए, मेरा प्रोग्राम सुनते हैं? सखर में तो चलता है. अच्छा, मुझे बताए आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो मैं बताती हूँ? वाह वाह वाह वाह. मैं सवाल पूछूँ आपसे, जवाब देंगे मुझे? मैंने सवाल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं कि एलोवेरा जो है वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर ऐड की गई है. एलोवेरा जिनके सिंधी में चेबो कुंवार बूटी, व्हाइट इज ब्यूटी क्रीम में. वाह साईं वाह, वाह साईं वाह. भाज लाइ ताड़ियूं थी वजन. केड़न दोस्तन की याद कंदा? हलो भा. अदे जी कॉल ड्रॉप थी वई. दोस्त वेचारा हई दुख कंदा असांखे यादि न कयो. चलो दोस्तन खे खैर तव्हां यादि करे वठिजो. पर हिते टाइम जेको थियो आहे त उहो थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ हलण जो. अच्छा, हीउ जेको सवालु हो मूंखे लॻे पियो त इनखे बि तव्हां वॾी ड्रेग कराईंदा, छिकींदा, पर इनखे तव्हां खेर छिकियो कोन. ऐं ॿिए कॉलर ई अचे, इन जो सही जवाबु ॿुधाए छॾियो. एलोवेरा जेका आहे उहा व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जे अंदरि एड थियल आहे, सम्झो था. उन खां अलावा हाणे वरी टियों सवालु पुछंदासीं जेको ॿियो कॉलर असांजे प्रोग्राम में ईंदो. हाणे टाइम थियो आहे बाबा न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ हलूं था. सो न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ खां हली पोइ.
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Viram, Fauri Khatam. Aaj hi Karibi Store se naam likha.

0: वलार अल कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ है कश्मीरन से यकजहती के इजहार लाया जो योम साल मल्हायो पे वे सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार के फैसले हैं कश्मीरन से एक्वी के इजहार लाए रैलियों खास तकरीबन जो भी एहतमाम किया एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार कई वही अज का सत साल अग 5 अगस्त 2019 से भारतीय हुकूमत एक तरफो कदम खणंदे वलार अल कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत खत्म कई हुई। सदर आसिफ जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कश्मीरी आवाम से बदी जो इजहार योम साल कश्मीर के मौके से सदर आसिफ जरदारी है तो दखण एशिया में जटादार अमन जो कयाम कश्मीर मसले के हल से जुड़ियल है। भारत जहा एक तरफा कदम आलमी कानून की भंगड़ी है अड़ा कदम कश्मीर की कानूनी हैसियत खत्म ना कर सकन पाकिस्तान कश्मीरी की सियासी सफारती हिमायत जारी रख। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो 5 अगस्त 2019 से भारत कश्मीर की आइनी ए कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश कई। भारतीय कदम आलमी कानून ए सलामती काउंसिल के ठहराव की भनकड़ी है दखण एशिया में अमन इस्तकाम लाए कश्मीर मसले जो हल जरूरी है पाकिस्तानी हुकूमत ए कौम कश्मीरी आवाम से गड बीठल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फिजाया दहरिया के सरबराहन जो योम साल से वलार अल कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार वलार अल कश्मीर में भारतीय फौज के घेराव इंसानी हकन के संगीन भनकड़ियों ए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के कब्जे से गणती जो इजहार वलार अल कश्मीर में भारतीय फौज हथा शहीद थन्दड़न के भेटा पेश एसपीआर मूजिब कश्मीर मसले जो हल कश्मीरी अवाम के ख्वाहिश ए सलामती काउंसिल के ठहराव मूजिब हुआ घुर्जे। भारतीय चिर डियारींदड़ बयान जहराणो अमल खिते में अदम एहतसाम जो सबब बनजी रो है अवाम ए पाक फौज कश्मीर की आजादी जो जायज हकीकी जिदोजहद में गड बीठल है। वलार अल कश्मीर जो अवाम पैंजन हकन लाए मजबूती से बीठल है भारतीय कदम आलमी कानून सलामती काउंसिल ए कश्मीरी अवाम जो उम्मीदन ते हमलो है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो दखण एशिया में अमन इस्तकाम कश्मीर मसले के हल से गंढियल है। वरी वजीर सैयद मुराद अली शाह तो सिंध जो अवाम कश्मीरन से गड है भारत कदम वलार अल कश्मीर की हैसियत तब्दील ना कर सकन। सीनियर वजीर सरजी लीना मेमण योम साल कश्मीर दखण एशिया की तारीख जो कारो ढी है भारतीय रियासती जबर ए इंसानी हकन जो भनकड़ियों कश्मीरी अवाम के जज्बे के कमजोर न थू कर सकन। योम इतिसाल कश्मीर के मौके से सिंध के मुख्तलिफ शहर में रैलियों ए तकरीबों कराची में सूबाई वजीर सैयद गनी की अगवानी में रैली कढ़ी वही हैदराबाद डिवीजन के कठो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान टंडो अलियार मटियारी जिले के नंढन वन शहर में रैलियों मीरपुर खास उमरकोट ए थरपारकर जिले के नंढन वन शहर में भी योम इतिसाल कश्मीर के मौके से रैलियों कढ़ी वही। नवाब शाह सांगड़ ए नौशेरो फिरोज जिले के भी नंढन वन शहर में कश्मीरन से एक्वी जो इजहार किया सखर खैरपुर ए घोटकी जिले में भी रैलियों कढ़ी वही। लाड़कानो कंबर शादात कोट कश्मोर रेडकंद कोट जेकमाबाद ए शिकारपुर में भी रैलियों कढ़ी वही। जल्द अपना हरमुस खुली वो भी सूरत में ईरान के खतरनाक हमलन के मुंह डेण पवन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टीवी इंटरव्यू में ईरान से बी आलमी जंग का भी वो हमलो करा हुआसी जो बुधी ईरान फोन से राबो कर मुहदे लाए आबना हरमुस जल्द न खुले तो ईरान से वो हमलो कंदी। आबना हरमुस बाबत शुरुआती मुहदो अज थे इम्कान हरमुस के उत्तर वे रस्ते से ईरान ए दखण वे रस्ते से ओमान जो कंट्रोल हों अमेरिकी न्यूज वेबसाइट की दावा न्यूज वेबसाइट मौजूद मुहदे से अपने हरमुस के कंट्रोल बाबत ईरान जहा घा मुतालबा मनिया वह शुरुआती तौर 7 दिन दौरान आबना हरमुस में गुजरद कहीं भी तहरी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: सिंध धरती के मतवाले।
3: टू कमर्शियल ब्रेक।
4: फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कहिए थी
5: सकरण के हो तो

0: या वर्जिश का पोए छिककर हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल किए कजे रुगु मुतासिर हंदते डीएम में ट्रेखा चार भेरा नरमी सा लगाए आराम जो एहसास वच बुध जेकरे उमरे या हजते वनने जो इरादो थी त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पान सा गड खणी वंजा
1: वाह पोए अजी वठींदस
0: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजी वेजी मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो
2: सुन

0: आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल.
2: फकीरी सौप जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
3: फकीरी नीम पिकली हीट सौप
2: जुड़ियों, चायों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए.
3: फकीरी नीम पिकली हीट सौप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार.
2: फकीरी नीम पिकली हीट सौप
3: जल्द तो गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम.
4: ओके जी, वापस आ जाइए मौजूद है जनाब शिखर मोरो, खास मटियारी, सकरन मेहरापुर मातली और लाड़का. मुझे जल्दी से बताइए और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है जनाब, आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 888-1 पर, फेसबुक पर और आपकी कॉल्स भी ली जा रही है. तो जो लोग हमें कॉल करना चाहते हैं, कॉल के थ्रू आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी आप हमें कॉल कर रहे हैं और कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88. ये हमारा कॉलिंग नंबर है जिसके ऊपर कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं. तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, मैं अभी आप लोगों की कॉल्स लेना स्टार्ट करूंगी. कॉल्स पर जो लोग आएंगे मैं उनसे यानी कि डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को इतनी सारी बातें बताती हूँ, चाहे वो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हो, तो इतनी सारी बातें बताती हूँ. तो कभी तो ऐसा दिन आना चाहिए कि मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई बताएं, जो इतना मैंने आप लोगों को बताया है उस सबसे आप लोगों ने कुछ सीखा भी या सिर्फ खाली बस इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले इंसान है. तो ऐसा खैर आपने नहीं बनना. आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि भाई ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये जो हम फला ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, चाहे वो वाइट एज लवली क्रीम हो, डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो या फिर वाइट एज की ब्यूटी क्रीम हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करें तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं. ओके जी, इसीलिए आज आप लोगों से थोड़े बहुत से आसान आसान सवाल जो हैं वो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में पूछने वाली हूँ, जो कि हम पूछते भी जा रहे हैं. तो बिल्कुल आप लोगों की कॉल्स हम लेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपकी कॉलें और एक कॉल आ भी रही है, तो ये वाली कॉल हम चलें पिक कर लेते हैं. ओके जी, सो नेक्स्ट कॉल. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
5: وعلیکم السلام. ابھی دلی کا کھانے کلا شہری گلا ہے.
4: اوکے خالق بھا چالا خوش آیو.
5: الحمدللہ خیر جان. تو بدا تو انا کرا ہے
4: الحمدللہ. مزے میں ہے پروگرام بدو پیا
5: جی. ابھی پروگرام بدو پیا.
4: اچھا مکھے تا یو بدھایو تا سیگمنٹ خبر تا کے. ہاں
5: جی.
4: اچھا سو سوال پوچھا متا وان کا
5: جی. پوچھ سوال
4: سوال مو جو یو تا وان کا تا مکھے بدھایو تا ٹری اف وٹامنز یا کیپسول کیپسول جے کنے کیڑے پروڈکٹ جے اندر ایڈ تھلا ہے. डी स्किन में. चलो मुखे बुधा केड़न दोसन की याद कंदा. हेलो भा.
5: हेलो जी.
4: केड़न दोसन की याद कंदा.
5: अभी अभी जरवार है, अभी सोलन किया कुमार ने खास के लिए यार मांग सोलन.
4: चलो थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल थे आप. आई नई गाल खबर पई. चलो नेक्स्ट कॉल जी तरफ अचूं था. नेक्स्ट कॉल अगर तुम कहो पे बिल्कुल जी कॉलिंग नंबर भी बुधाईंदी. कॉलिंग नंबर आई 0332-1322-88. नेक्स्ट कॉल है डिसू केर मौजूद है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
6: वालेकुम सलाम.
4: केर मौजूद है.
6: सखर खान किरण लगारी.
4: सखर खान किरण लगारी छाला किरण खुश आयो.
6: अल्हम्दुलिल्लाह. तू कहां बताओ.
4: अल्हम्दुलिल्लाह मजे में. मजे में प्रोग्राम बुधो पे किरण.
6: जी जी बिल्कुल.
4: अच्छा मुखे बुधाए तो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो जे को बुधाईंदी आया. अरे बा किरण जी कॉल ड्रॉप थी वही. मां चाहे पे किरण सा थोड़ो गाल आया. ओ हेडी सारी गालियों कयो वे तो सा गालियों कयो आई ली. ओके जनाब, सो कॉलिंग नंबर 0332-1322-88. सवाल जेको हानी तवा कॉल कंदा सवाल तव्हां खां पुछंदमि त 30 विटामिन्स जा जेके कैप्सूल्स आहिनि उहे कहिड़े प्रोडक्ट जे अंदरि एड थियल आहिनि इहो सवाल तव्हां खे इन जो जवाब ॿुधाइणो आहे मां 16 तव्हां खां सवाल पुछां थी त मुंहिंजी इहा हिकिड़ी ख़्वाहिश आहे त तव्हां इन जा सवालनि जा जवाब ॾियो जी मां तव्हां खां इलाही सवाल पुछी सघां सो नेक्स्ट कॉल पिक करे वठूं था ॾिसूं नेक्स्ट कॉलर केरु मौजूदु आहे हलो जी अस्सलाम वालेकुम केरु मौजूदु आहे रिदा बतूल किथां कॉल कई
7: आहे
4: अच्छा रिदा बतूल कंबर खां फोन कई आहे छा हाल आहे रिदा ख़ुशि आहियो ओके ओके ठीकु ठाकु आहियो अच्छा प्रोग्राम ॿुधो पिया मां बि सफ़ा ठीकु आहियां उन खां अलावा कोई प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो आहे जेको ॿुधाईंदी आहियां चलो मूंखे इहो ॿुधायो त सवाल जेको पुछो हुन जो जवाबु अचे थो नंढड़ी केतिरनि सालनि जी
7: आहे
4: 10 जी अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां 10 जा आहियो न पोइ बि तव्हां वाइटी जी जेका लवली क्रीम आहे न उहा इस्तेमालु करे सघो था तव्हां घर में कंहिंखे चइजो पंहिंजी अम्मी खे चओ जेका तव्हां ॿुधाए थी तव्हां बि इलाही सुठा आहियो माशा अलाह सां तव्हांखे ख़ुशि रखे ऐं ॿियो कहिड़ो यादि कंदो जी थैंक यू थैंक्यू तव्हांजो मोहबतूं आहिनि कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो
7: हलो
4: हलो आई लव यू टू रिदा थैंक यू सो मच सोणी नंढड़ी छोकिरी 10 जी असांजे प्रोग्राम में शामिल थी ऐं नंढड़ी ॿारड़ी हुई त मां सोचो हाणे हिन खां छा ई सवाल पुछां सो बिल्कुल जी प्रोग्राम आहे वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वञे थो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे 52 साल की कॉल मूंखां ड्रॉप थी वई माज़रत सो नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था ऐं केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे हलो जी अस्सलाम वालेकुम केरु मौजूदु आहे यास्मीन बात कर रही है मीरपुर खास से
8: मैं आपका रोज तो सुनती हूँ लेकिन आपका कॉल तो लेती नहीं
4: नहीं नहीं यास्मीन मैं कोशिश करूँगी कि कॉल्स लूँ ताकि ये जो लोग मैसेज के थ्रू शामिल नहीं हो पाते तो वो कॉल कर ले हमें
8: तो आपका रोज बहुत अच्छा होता है पूरा शो सुनती हूँ बिल्कुल खामोशी
4: अच्छा चले खामोशी से अगर आप शो सुनती तो आपको सारी चीजें पता होंगी कि मैं शो में क्या क्या बताती हूँ
8: वो तो बताती है लेकिन मैं क्या हूँ करीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करती ना मैंने अपनी बहन को बताया वो इस्तेमाल कर रही है
4: अच्छा चलिए ठीक है ओके
8: अच्छा लगा एक बार
4: चलिए जबरदस्त सवाल पूछूं यास्मीन आपसे सवाल ये कि मुझे बताएं 30 विटामिन्स के कैप्सूल जो है वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर एड किए गए हैं वाइट एज लवली में चलिए मुझे और बताएं क्या कहना चाहेंगी ये कहीं मैंने तो आपकी हेल्प नहीं कर दी लोगों को ये लगेगा कि भाई देखे सिद्रा ने बता दिया यास्मीन को
8: आपको सुनती हूं वगैरह को मतलब इतनी तरजीह नहीं देती हूं सुनने से ना आपकी आवाज सुनती हूं आपका हंसना अच्छा लगता है
4: थैंक यू यास्मीन मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है कि एहसास होता है कि भाई
8: पता है आपने वो गाना काफी दिन से प्ले नहीं किया
4: कौन सा हाँ ये गाना आज लगाऊंगी मैं चले थैंक यू सो मच यास्मीन इतनी मोहब्बत देने के लिए और क्या कहेंगी आप
8: सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और हंसती रहो हमेशा मुस्कुराती
4: रहो थैंक यू सो मच प्यारी बहुत शुक्रिया आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है कि एहसास होता है कि भाई वाकई दुनिया में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं और ये बात मुझे किसी ने कही थी कि अगर एक लड़की की लड़कियां तारीफ करें तो समझ लीजिए कि वो अपने जो है ना मतलब इस आरजे वाली फील्ड में वो कामयाब हो चुके हैं तो यस आई एम कामयाब इंसान ओके जी सो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं कॉलिंग नंबर है 0332-1322-NEE हाँ जी मैं भी सोच रही थी कि इस लिंक में हमने कदम रखा है तो लड़कियों की कॉलिंग आना स्टार्ट हो गई है हाय काश सिर्फ लड़कियों की कॉलिंग आए अरे बाबा छोकरा तव्हां कॉल कयो न छो था कॉल कयो लड़कियुनि जी लॻे थी त यादि सुठी ॻाल्हि आहे सो नेक्स्ट कॉल ॾिसूं कहिड़े रस्ते सां मौजूद आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो चले ये कॉल थोड़ी डिस्टर्ब करेगी हमें सो हम इसे ड्रॉप करते हैं नेक्स्ट कॉलर हम पिक करते हैं देखें कौन मौजूद है हेलो जी वालेकुम अस्सलाम क्या मौजूद
8: ओके
4: कुर्बान भाव खुश आयो मां सोचा पंहिंजा कुर्बान भाव ज़ाहिर ना आहिनि थियो अल्लाह अज मन तांके भी रुवारी से जो कॉल मुखे बुधाय था केड़ो प्रोडक्ट घणो पया
5: तो
4: वठण था तो दुकान वारो तांके कीअं ॾे थो जॾहिं तव्हांखे नालो ई ख़बर न आहे चलो चलो थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल थियो भा सोनो झंडो मरी खां शामिल थींदो आहे अच्छा कॉलिंग नंबर है 0332132288 नेक्स्ट कॉल डिसम केयर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
9: वालेकुम सलाम
4: केयर मौजूद है मुझा कने ठरी ता पण माय जो आवाज होदी
9: सादिया
4: सादिया किता फोन किया
9: लाड़कारिया
4: लाड़कानी का हां
9: एती रियल है उसी में बात करियो
4: अच्छा उर्दू में बात करें चलिए ठीक है कोई मसला नहीं सादिया बताएं कैसी है
9: जी मैं ठीक हूँ आप बताएं
4: मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में कौन से प्रोग्राम सुन रही हैं पता है आप जानती हैं सुनती हैं
9: सॉरी मैं लेकिन काम में बिजी होती हूँ कभी कभार सुन लेती
4: हूँ चलिए मुझे बताएं कि आप प्रोग्राम कभी कभार सुनती हैं
9: हाँ मेरी बहन सुनती है ना हैप्पी
4: अच्छा आप हैप्पी की सिस्टर है
9: जी मैं उसकी बड़ी बहन
4: हूँ ओके ओके चले हैप्पी को तो फिर जी
9: आपसे सवाल करना है
4: जी जी पूछे अल्लाह ही रहम करे
9: ये के
4: हाँ
9: ये के मेरी शादी होने वाली है ना इसलिए कह रही हूँ कि मैं वही थी आपसे मिलने चाहते हैं
4: चलिए फिर आ जाएं कोई मसला ही नहीं
9: मैं भी नहीं शादी नहीं ना अभी
4: तो शादी के बाद आएंगी हस्बैंड चले ये भी ठीक है कोई मसला नहीं जब आपका दिल करे तब आइएगा
9: अभी नहीं शादी के बाद आओ हम मैं बात करूंगी आपसे
4: वैसे आपकी शादी कब है आपकी शादी
9: अभी पता नहीं जनवरी महीने में
4: तो ये जनवरी तो इतना दूर है भाई आप आ जाएं मिलने ऐसी भी कोई क्या बात है
9: अच्छा नहीं मैं कह रही थी मैसेज बात करूंगी तो वो कहेंगे लड़का है इसके लिए मैंने कहा मैं फोन कर देती
4: हूँ चले चले ठीक है और बताएं क्या कहेंगे किसको सलाम देंगे किसको याद करेंगे
9: कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं तो याद कर रहे थे सुनती है उसको सलाम कह रही कमरे में बैठिए
4: चलिए चलिए ठीक है सलाम उसको भी और बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सो मच सादिया नाम था भाई लड़की का बहुत अच्छी माशाल्लाह और क्या ही बोलूं मैं मीम याद आ गई ये वाली क्या ही बोलूं मैं अच्छा चलिए मैंने गाना रखा था वो तो खैर मैंने देखा तो टाइम इतना जल्दी गुजर गया कि गाना आप तो खैर प्ले नहीं हो सकेगा तो हम इसी मामले में एक और कॉल पिक कर लेते हैं ठीक है क्या कहते हो सड़ो था नहीं छोकरी झुकाली थी वैसे ओके सो कॉलिंग नंबर 0332132288 नेक्स्ट कॉल हेलो वालेकुम अस्सलाम केर मौजूदा किरण
10: महक
4: सखर से महकती महक तो नहीं है आप क्योंकि सखर से महकती महक हमें कॉल करती थी मैसेज
11: इट्स 2:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
12: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम
4: नहीं मिल अल्लाह ये चले गए ना अभी ये आप सब लोगों के मैसेजेस पहुंचा दो क्योंकि भाई सखर में मीरपुर खास में हर जगह अवेलेबल करा दें ताकि हमारे लोगों को आसानी हो चले महक मुझे और बताएं क्या कहेंगे
10: मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ आप इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करती हैं मैं सुनती हूँ बड़े प्यारी सी बातें करती हैं
4: थैंक यू आपसे कम ही प्यारी बातें करती होंगी आप बहुत प्यारी हैं
10: मैं आपका आवाज सुनती हूँ ऐसे लगता है मैं सुकून आ जाता है
4: हवाओं में उड़ रही है चलें, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैक. आप कॉल किया करें मेरे प्रोग्राम में जब भी मैं कॉल्स लूं.
10: हाँ आपी भाई
4: जी
10: आपसे लगती ही नहीं है.
4: आज मुझे लग रहा है कि लड़कियों का दिन है आज तकरीबन प्रोग्राम में आपने देखा होगा लड़कियों की कॉलिंग आ रही है. अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए. चलें चलें, मैं दुआ करूंगी आपकी रोज ही कॉल लगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा हो गया, कमर्शियल लेना है मैंने. सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ऐसी कॉल किया करें. महक हमारे साथ लाड़काना से नहीं बल्कि सखर से मौजूद थी. सो ब्रेक का टाइम हो गया है. बातें तो लड़कियां जब दो बैठती हैं बातें करें तो आपको पता ही होगा कि वक्त का पता ही नहीं चलता. सो यहां पर लेते हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं. तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ.

0: जीए मीरपुर खास एफएम 88, मीरपुर खास की आवाज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप खारे के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: GFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।
6: ॾाढो भलो कयो अला।
7: अच्छा, चलो चलो, का ॻाल्हि कोन्हे, का कोई ॻाल्हि कोन्हे, का कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदो? आवाज़ कटिजे थो, आवाज़ प्यालो करे वियो। आवाज़ कटिजे थो थोरो, तव्हांजो नालो ॿुधाइजो पंहिंजो। अलीज़ा
8: जी,
7: अलीज़ा किथां, मीरपुर खास खां कॉल कई
8: आहे?
7: अलीज़ा साल आहे, सफ़ा मज़े में, तव्हां ख़ुशि आहियो अलीज़ा?
8: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मां बि ठीकु आहियां।
7: अच्छा अलीज़ा, ॿुधायो, हाणे मीरपुर खास में मिलनि था प्रोडक्ट या अञा ताईं कोन अवेलेबल थिया आहिनि?
8: अञा
7: ली, इहा त ॾाढी ग़लति ॻाल्हि आहे, मिलंदा कोन त माण्हू वठंदा कीअं? चलो चलो, अवेलेबल कराए वठूं था। मूंखे ॿुधायो त टॉपिक यानी कि सेगमेंट जेको आहे सो तव्हां खां सवाल पुछां। जड़ी बूटियूं कहिड़े प्रोडक्ट में ऐड थियल
8: आहिनि?
7: न न, बसि तव्हां पहिरियों सवाल सही हो, पहिरें खे लॉक कयो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन मां ख़बर पइजी वई त तव्हां गौर सां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो। कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदव अलीज़ा? जी निदा ॻाल्हाईंदी छो ने?
8: हलो,
7: खैर तव्हां ॿुधायो निदा, ठीकु आहियो? तव्हां छो न ॻाल्हाईंदा आहियो? अच्छा, शर्म ईंदो आहे, इहो शर्म केसि ताईं ईंदो? चलो ॿियो छा चवंदव, जेको शर्मा ईंदो माण्हू मूंखे पाण सम्झ में ईंदो त हिन माण्हू सां मां छा ॻाल्हायां हाणे? ॿियो कंहिं दोस्त खे यादि कयो या कुझु चवणु चाहींदा? जी चलो, थैंक यू सो मच निदा सां गॾु मौजूद, असांजी दर्दे दिल, दर्दे दिल, ॾाढो दर्द अथसि सो। अॼु वाकई मुंहिंजी इहा हिकिड़ी ख़्वाहिश हुई त मुंहिंजे प्रोग्राम में या न इलाही सारी छोकिरियुनि जूं कॉल्स अचनि, उहा अॼु विश मुंहिंजी पूरी थी, यानी इन मां इहो साबित थिए थो त कॾहिं न कॾहिं तव्हांजूं ख़्वाहिशात पूरियूं थी वेंदियूं आहिनि। सो अलहमदिल्ला, अलहमदिल्ला। सो कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। नेक्स्ट कॉल वठूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हलो, वालेकुम अस्सलाम, केरु मौजूदु आहे? ओके वकार भाउ, छा हाल, ख़ुशि आहियो? अलहमदिल्ला, मज़े में। प्रोग्राम ॿुधो पिया?
9: प्रोग्राम तव्हांजो ॿुधायो।
7: कहिड़ो प्रोग्राम ॿुधो पिया?
9: प्रोग्राम व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम।
7: वाह वाह, इस्तेमाल कई था व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम?
9: हाँ, एक चक्कर इस्तेमाल किया।
7: सिर्फ एक चक्कर?
9: आजी प्रोग्राम कदे कदे ना बुधो लेने में करे खत्म थी वने वरी वटदा से शाम
7: एकरे चक्कर में ताजी क्रीम खत्म थी वई
9: रब्बा ते जणा ना
7: आई ली पो एक चक्कर में खत्म करी सडी सबनी उनन की चो
9: के मोराडी जा मारो लेपो दे रखे दो
7: उनन की चो पांजी बैठो मुजी ना हणो
9: जी यार पांजी वटदा से
7: चलो केडन दोसन के याद कंदा
9: जी मजो दोस्त अब्दुल जब्बार अफसर अली अमीर हमजा ताना
7: हेलो आवाज चिच में तो अचे हेलो आवाज चिच में चोयो ओके सो नेक्स्ट कॉल वठू या कॉलर्स के हाने थोड़ो रेस्ट दियो एही वठू ता ये कॉल वठू ताला शु दिल ती चले हेलो अस्सलाम वालेकुम
9: वालेकुम सलाम
7: केर मौजूदा
9: अच्छा हाल है केरा
7: अल्लाह ही कीरो
9: चवंदा
7: आई
9: चवंदा ता इन देना सुदराज वा बाकी मुके खबर कोने मा केरा
7: मुजी अल्लाह शु दिल चो ते ये कॉल वठा दिसो ता निकरी आया
9: अच्छा देन ठीक आयो
7: सफा ठीक ता मुदा ठीक आयो मजे में
9: अल्लाह जाए सन मुजे मन दवाऊ लगी से तां जी तां बताए
7: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बदो प्या
9: पूर गला सच कर रहा
7: है सच गलायो
9: ताके खबर आ मां गला न पुट रहा हर वक्त आ गया से नेट पर लगे कह दो अलाइम सही अली को ना फिल्म मां था के
7: एने थोड़ो मसलो हो ना शिकारपुर तक आवाज कौन पहुंचंदो हो
9: ख्याल
7: रखना
9: ओके मतलब ठीक है बस सब का फिर टाइम मुझे दोस्त भी आयो बहन भी आयो देख के बाहर आते
7: हूं चलो थैंक यू सो मच कानो सरो ख्याल रख जो प्यारो फारूक भासे से गट मौजूद हुए शिकारपुर का कॉल कंदो आए आईना का अलावा बस हानी कॉलर्स के थोड़ो रेस्ट दियो था असा भी थकी जी प्यासी कॉलर भी थकी जी पियोंदा कॉल ट्राई करे करे

0: अरे छा था जो काल वारन के कमेंट में घुरात खबर पे हुनन विचार में बटन वारो मोबाइल आ ना गाल के समझना करो बाकी जिन वट आ है कमेंट तो वे वरी कन था
1: समझो था
0: बाकी जेकी विचारा न था करी सकन कमेंट उए छा कन उए कॉल कन बिल्कुल तमाज ला कालियो आ है सो बिल्कुल सी प्रोग्राम आ है व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पोंसर्ड कयो बने तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सा तमा केडो प्रोडक्ट लगायो आ है तमा केडे प्रोडक्ट जे बारे में चायो प्या त बाबा सांते हली लगाइंदा सी आइन देर न कयो वठो बाबा ही तमाम प्रोडक्ट सुठा आ है जेके मार्केट में तमाज ला अवेलेबल आ है अगर कोन था मिलन कोई तमा के नंबर से राबतो करनो पंदो जेके नंबर्स मा हाने तमा के बुधाया रे ठीक है नंबर्स ते तमा के राबतो करनो आए आई नंबर आए 03 12 50 25 907 आई बियो नंबर आए 033 273 4309 हाँ भाई वात पटजी या मानो जा एडा सोना थींदा तो वात त पटबानी तवा भी लाजमी इस्तेमाल कजो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आज अन्या कुछ छोकरिन जी कॉर्नर लगी जे दुआ थी वई असा जी निदड़ी थी वई लुबी थी वई ये लकड़ी रेजी वई हूं

अच्छा मकसूद मलाह हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल जी आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। हैप्पी गर्ल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और सादिया को भी

किशोर भाई के ही गलत आ छोकरा कथे आ सदाई त छोकरा गालाईंदा आहिनि अॼु छोकरनि ॻाल्हायो इलाही सुठो लॻो अला करे सदाई ईअं थिए ऐं उन खां अलावा मोहम्मद ज़मान भाउ थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू चओ था हिन करे आउं कॉल नथो कयां तो असांखे मुंझाए थो छोकिरियूं अवां खां सवाल पयूं कनि ॾिसो न छोकिरियूं केॾियूं कॉन्फिडेंट आहिनि तव्हां बि पुछो नी तव्हांखे कंहिं झलियो आहे

तंज भी माना करे वणो था नी अज नसरुल्ला भाई कहते अज छोकरे रिकॉर्ड टोड़े छड़ियो बाबा ये ना मजण मुराद वाला हकीकत।

अच्छा मूसा गोरी भाई, थैंक यू सो मच. दर्द दिल के हाय अल्लाह, आज मैंने चंदा जाने से बात की. सर मिली. हा अला शाबस के जेके स्टार्टिंग खां वठी हिनमहिल ताईं कॉमेंट कनि पिया. अला तव्हांखे मतिलब अवॉर्ड ॾिनो वञे इलाही कॉमेंट्स करण जो. ईअं बि हुजे. हा अच्छा आमिर खान वहेसर, वालेकुम अस्सलाम. प्रोग्राम तव्हांखे पसंदि अचे पियो, थैंक यू. तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया ऐं गॾु गॾु वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट बि आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा जीअं तव्हांखे मुकमल ख़ूबसूरती मिली वञे. अच्छा हैप्पी गर्ल की थी सॉरी वो चले. हाँ कोई बात नहीं. अच्छा चाचा कहते आज फिर आपने निराश कर दिया. हाय चाचा आप खुश कब होते हैं.

0: गणे।
1: अच्छा नवाज,
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem.
1: मर्द मायूं सभी हनी सगो था सो मुकलानी नाहे सन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: महदे सा अपना हरमुस के कंट्रोल बामित करे तो आहे आमिर की तैयारियों आज महदे जो ऐलान करे सकंती हूं। जल्द अपना हरमुस खुली वेंदो भी सूरत में ईरान के खतरनाक हमलन के मुंह डेणो पवंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टीवी इंटरव्यू में चयो आहे त ईरान ते भी आलमी जंग खां बे वडो हमलो करण वारा हुआसीं, जंहिं जो बुधी ईरान फोन ते राब्तो करे मुआहदे लाइ चयो। अपना हरमुस जल्द न खुली त ईरान ते वडो हमलो कंदासीं। ईरान जंग सबब अमेरिकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम थार जा 80% इंटरसेप्टर्स ख़तम थी विया आहिनि। अमेरिकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिब अमेरिकी अधु ज़खीरो इस्तेमाल थी चुको आहे। हथियारनि जी घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमेरिकी इतिहादनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिब बेदुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमेरिकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। यमनी हुसैन पारां रेड सी में सऊदी बहरी बेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसैन जे फौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार बेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जे बहरी नाकाबंदी बाद 8 बहरी बेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे। फरारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत ख़तम करण ख़िलाफ़ ऐं कश्मीरियुनि सां यकजहतीअ जे इज़हार लाइ योम इतिसाल मल्हायो पियो वञे। सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार जे फ़ैसिले ऐं कश्मीरियुनि सां एकीअ जे इज़हार लाइ रैलियूं ख़ासि तक़रीबनि जो बि अहतमाम कयो वियो। हिकु मिंट जी ख़ामोशी बि इख़्तियार कई वई। अॼु खां 7 साल अॻु 5 अगस्त 2019 ते भारतीय हुकूमत हिकु तरफ़ो क़दम खणंदे फरारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़तम कई हुई। सदर आसिफ ज़रदारीअ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कश्मीरी अवाम सां वधीअ जो इज़हार। योम इतिसाल कश्मीर जे मौक़े ते सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में जथादार अमुन जो क़याम कश्मीर मसइले जे हल सां जुड़ियल आहे। भारत जा हिकु तरफ़ा क़दम आर्मी कानून जी भञकड़ी आहिनि। अहिड़ा क़दम कश्मीर जी कानूनी हैसियत ख़तम नथा करे सघनि। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जे इख़लाक़ी सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त 5 अगस्त 2019 ते भारत कश्मीर जी आईनी ऐं कानूनी हैसियत तब्दील करण जी कोशिश कई। भारतीय क़दम आलमी कानून ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ जी भञकड़ी आहिनि। ॾखण एशिया में अमुन इस्तेकाम लाइ कश्मीर मसइले जो हल ज़रूरी आहे। पाकिस्तानी हुकूमत ऐं क़ौम कश्मीरी अवाम सां गॾु बीठल आहे। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पाक फिज़ाया ऐं बहरिया जे सरबराहनि जो योम इतिसाल ते वलारियल कश्मीर जी अवाम सां यकजहतीअ जो इज़हार। वलारियल कश्मीर में भारतीय फ़ौज जे घेराउ, इंसानी हक़नि जी संगीन भञकड़ियुनि ऐं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सिस जे कब्ज़े ते गलतीअ जो इज़हार। वलारियल कश्मीर में भारतीय फ़ौज हथां शहीद थींदड़नि खे भेटा पेश। ISPR मूजिब कश्मीर मसइले जो हल कश्मीरी अवाम जे ख़्वाहिशनि ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ मूजिब हुअणु घुर्जे। भारतीय चिड़ ॾियारींदड़ बयान ऐं चाहियारो अमल खिते में अदम इस्तेकाम जो सबबु बणिजी रहियो आहे। अवाम ऐं पाक फ़ौज कश्मीरनि जी आज़ादी जे जाइज़ ऐं हक़ीक़ी जिदोजहद में गॾु बीठल आहे।

0: अरे वे स्टोर था नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
1: अखिन जे सब खां वडे इदारे जा मशहूर तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरेशन गर्दन की बीमारियों जो इलाज ए अखियन की बिन बीमारियों जो इलाज कंदा आहिन टाइम रोजाना सुबह 10 वगे का 1 वगे ताई शाम 6 वगे का रात 8 वगे ताई आचर मोकल है जुमे जे दी ऑपरेशन कया विंदा एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेजर अखियन की अस्पताल सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास मोबाइल नंबर 0303-2617-077
0: खबरी खुश खबरी खुश खबरी हाने अमा के परेशान थे जी का भी जरूरत ना आहे जे करे तहां कि सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कह वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306-244-7700
2: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जी मीरपुर खास एफएम 88 की आवाज जो आपका पैगाम स्कूल कॉलेजेस ब्यूटी पार्लर्स कॉस्मेटिक्स शॉप्स जनरल और मेडिकल स्टोर्स बुटीक गारमेंट शॉप्स मोबाइल शॉप्स ज्वेलर शॉप्स अस्पताल फ्री मेडिकल कैंप्स एनजीओस फूड पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स शोरूम ऑटो शॉप्स हाउसिंग स्कीम्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स सकाफती मेला होटल्स रेस्टोरेंट्स पेट्रोल पंप्स सीएनजी स्टेशन शादी हॉल मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स सीट कारपोरेशन सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को चार चांद वो भी आपकी तवक्कोआत
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पहचो शहर, पहचो घर, सकरण, आई सकरण जो आवाज,
3: GFM 90.8।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अबन हरमज बाबत शुरुआती मुहिदो अज थे इम्कान शुरुआती मुहिदे तहत अबन हरमज के 60 दिन लाइ बिना फीस से खोलो वो अमेरिकी न्यूज वेबसाइट जी दावा मौजूद मुहिदे से अबन हरमज के कंट्रोल बाबत ईरान जहा घा मुतालबा मना वह हरमज के उतर वे रस्ते से ईरान दखण वे रस्ते से ओमान जो कंट्रोल हों ईरान मंजूरी जो अमल मुकम्मिल कर वरतो है अमेरिकी इख्तियार अज मुहिदे जो ऐलान कर सकन थ ईरान जंग सबब अमेरिकी हथियारों के जखीरे में वही घटताई दिफा मिजाइल डिफेंस सिस्टम थार जहा 80 सैकड़ों इंटरसेप्टर खत्म थी वह अमेरिकी खबरू इदारे CNN की रिपोर्ट मूजिब अमेरिकी अध जखीरो इस्तेमाल थी चुको है हथियारों की घटी वयल जखीरे अमेरिकी इत्यादिन से ईरानी हमलों के खदशे सबब सदर ट्रंप ईरान से वो हमलो करो फैसलो मुलतवी किया बरतानवी मीडिया मूजिब भी दुरुस्त निशानो लगाइंदड़ अमेरिकी मिजाइल खत्म थी वह जमनी हुसैन पारा रेड सी में सऊदी बहरी बेड़े के निशानो बनाने की दावा हुसैन के फौजी तर्जमान है तो रेड सी में सऊदी अरब के तेल बरदार बेड़े के मिजाइल से निशानो बनाया है सऊदी के बहरी नाकाबंदी बाद अठ बहरी बेड़न के समुंड में निशानो बनाया है वालारेल कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने खिलाफ़ कश्मीर से यकजहती के इजहार लाए योम इतसाल मल्हायो पियो वञे सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार के फैसले कश्मीर से एक्वी के इजहार लाए रैलियों खास तकरीबन जो भी एतमाम किया वो एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार कई वही अज का 7 साल अग 5 अगस्त 2019 से भारतीय हुकूमत एक तरफो कदम खणंदे वालारेल कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत खत्म कई हुई सदर आसिफ जरदारी है वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कश्मीरी अवाम से बदी जो इजहार जो में साल कश्मीर के मौके से सदर आसिफ जरदारी है तो दखण एशिया में जटादार अमन जो क्याम कश्मीर मसले के हल से जुड़ल है भारत जहा एक तरफा कदम आलमी कानून की भंजकड़ी अड़ा कदम कश्मीर के कानूनी हैसियत खत्म नथा कर सकन पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इखलाकी सियासी सफारती हिमायत जारी रख वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो 5 अगस्त 2019 से भारत कश्मीर के आइनी और कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश कई भारतीय कदम आलमी कानून और सलामती काउंसिल के ठहराव की भनकड़ी दखण एशिया में अमुन इस्तकाम लाए कश्मीर मसले जो हल जरूरी है पाकिस्तानी हुकूमत और कौम कश्मीरी अवाम से गड बीठल है फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पाक फिजाए बहरिया के सरबराहन जो योम इतसाल से वलारियल कश्मीर के अवाम से यकजहती जो इजहार वलारियल कश्मीर में भारतीय फौज के घेराव इंसानी हकन की संगीन भनकड़ी और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सिस के कब्जे से गिनती जो इजहार वलारियल कश्मीर में भारतीय फौज हथा शहीद थींदड़न के भेटा पेश ISPR मौजूद कश्मीर मसले जो हल कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशन और सलामती काउंसिल के ठहराव मूजिब होने घुर्जे भारतीय चिड़ लियारींदड़ बयान जहराणो अमल खिते में अदम इस्तकाम जो सबब बणजी रो है अवाम ए पाक फौज कश्मीर की आज़ादी के जायज़ और हकीकी जिदोजहद में गड बीठल है वलारियल कश्मीर जो अवाम पैंजन हकन लाए मजबूती से बीठल है भारतीय कदम आलमी कानून सलामती काउंसिल और कश्मीरी अवाम के उम्मीदन से हमलो है पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो दखण एशिया में अमुन इस्तकाम कश्मीर मसले के हल से गंढियल है वले वजीर सैद मुराद अली शाह तो सिंध जो अवाम कश्मीर से गड है भारत कदम वलारियल कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा कर सकन सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन तो योम इतसाल कश्मीर दखण एशिया की तारीख जो कारो ढी है भारतीय रियासती जबर इंसानी हकन जो भनकड़ियों कश्मीरी अवाम के जज्बे के कमजोर न थू कर सकन योम इतसाल कश्मीर के मौके से सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में रैलियों और तकरीबू कराची में सूबाई वजीर सैद गनी की अगवाणी में रैली करी वही हैदराबाद डिवीजन के ठठो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान टंडो अलियार मटियारी जिले के नंढन वन शहर में रैलियों मीरपुर खास उमरकोट और थरपारकर जिले के नंढन वन शहर में भी योम इतसाल कश्मीर के मौके से रैलियों कड़ी वह नवाबशाह सांगड़ और नौशेरो फेरो जिले के भी नंढन वन शहर में कश्मीर से एक्वी जो इजहार किया वो सखर खैरपुर और घोटकी जिले में भी रैलियों कड़ी वह लाड़कानो कंबर शादादकोट कश्मोर अटकनकोट जेकमाबाद और शिकारपुर में भी रैलियों कड़ी वह
सिंध काबीना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट जे नई सर जोड़ चक करण जी मंजूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सूबाई काबीना जो इजलास सूबाई वज़ीरनि सलाहकारनि ऐं लाॻापियल अमलदारनि जी शिरकत। पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विस लाइ 2026-2027 जी बजट मंज़ूर। 2,72,30,00,000 रुपियनि जी ग्रांट बि मंज़ूर। दहशतगर्दी चोड़ एक्ट में तरमीम जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। महिराण हाय ते बि टूल उगाड़ण वारे फ़ैसिले जी मंज़ूरी ॾिनी वई। पोरेतनि जी घटि में घटि उजरत 40,000 मां वधाए 43,000 रुपया करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। मुराद अली शाह चयो आहे त नयूं उजरतूं सिंध में क़ाइम समूरनि सनअतनि ते लागू हूंदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जे सदर जी वफ़द सां गॾु मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापियल ऐं सहकार खे वधीक मज़बूत बणाइण ते इतफ़ाक़। शहबाज़ शरीफ चयो त हुकूमत नौजवाननि जी सलाहियतनि खे

सिंध हाई कोर्ट सखर फहमीदा पिताफी की बाजियाबी लाइ दाखिल दरख्वास्त वापस वठण वाली इक़्तदार रद्द करे छी। अदालत जो फहमीदा पिताफी के हर सूरत बाजियाब कराए पेश करण जो हुकुम। आई जी सिंध, होम सेक्रेटरी ए लागापियल आफिसर के जाती निगरानी में कार्रवाई करण की हिदायत। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना जो चवण है तो औरत की बाजियाबी के यकीनी बनाए ईंदड़ बुधनी से अदालत में पेश किया वे। रुगो रिवायती रिपोर्टू जमा कराने बदरान नतीजा डींदड़ अमली कदम खया वन। 10 अगस्त ताई औरत के बाजियाब कराए तफसीली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पेश कई वे। गुजरियल बुधनी से दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस वठण की अस्दा कई हुई। तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सदे मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा रैलियों। SUP ए PTI कारकुनन मुख्तलिफ शहर में रैलियों कड़ियों। कंदकोट, दादू, बदीन, उमरकोट, सेवण, पनो, अकिल, मुरीद, शाख, ठुल ए बेन शहर में एहतजाज किया। अगवाणन पारा मुल्क में आइन ए कानून की हुक्मरानी कायम करण जो मुतालबो।

सिंध के मुख्तलिफ शहर में ज़रई पानी के खोड़ खिलाफ़ आबादगार जहा मुजाहरा केन शाह राइस केनाल मां निकरंदड़ बेगुदेरो शाखरी आबादगार गोजुर लिंक रोड से धरणो हो। नसीराबाद में भी पानी खोड़ खिलाफ़ एहतजाज किया। अगवाणन जो नसीराबाद के शाखन में पानी छोड़ करण जो मुतालबो।

0: नवाब शाह जे पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी जे हाउस जॉब कंदड़ नर्सिस जो वजीफो न ॾियण वधाइण खिलाफ़ एहतजाज। नर्सिस चयो त माहवारी 30,000 रुपया वजीफ़ो ॾियण जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो हो। शिकायत करण बावजूद असांखे अञा ताईं 30,000 रुपया माहवार वजीफ़ो नथो ॾिनो वञे। मसला हल कया वञनि। यूक्रेन जे राजधानी ते रूस जे मिज़ाइल हमले में 17 शहरी मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। यूक्रेन सदर जो मिज़ाइल इंटरसेप्टर्स ॾियण जो मुतालबो। दिफ़ाई निज़ाम ॾिनो वञे हा त इंसानी जाननि जो नुक़सान घटि थिए हा। दोस्त मुल्क दिफ़ाई निज़ाम ऐं इंटरसेप्टर्स फ़राहम कनि।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में टे जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: वही घटताई दिफाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड जा 80% इंटरसेप्टर खत्म थी विया. अमरीकी खबरों इदारे CNN की रिपोर्ट मुजिब अमरीकी पेट्रियाट इंटरसेप्टर्स जो भी अध जखीरो इस्तेमाल थी चुको है. हथियारों के घटी वियल जखीरे अमरीकी इतिहादियों से ईरानी हमलों के खदशे सबब सदर ट्रंप ईरान से वो हमलो करने वो फैसलो मुलतवी किया. बरतानवी मीडिया मुजिब भी दुरुस्त निशानों लगाईदड़ अमरीकी मिसाइल खत्म थी विया. यमनी हुसैन पारां रेड सी में सऊदी बहरी बेड़े के निशानों बणण जी दावा. हुसैन जी फौजी तर्जुमान है त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार बेड़े के मिज़ाइल सां निशानो बणायो है. सऊदी जी बहरी नाकाबंदी बाद 8 बहरी बेड़न के समुंड में निशानो बणायो है. वालायरल कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करण खिलाफ ऐं कश्मीरियन सां यकजहती जे इज़हार लाइ अॼु योम इस्तेसाल मल्हायो पियो वञे. सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार जे फैसले ऐं कश्मीरियन सां एके जे इज़हार लाइ रैलियूं खास तकरीबन जो भी अहतमाम कयो वियो. हिकु मिंट जी ख़ामोशी बि इख़्तियार कई वई. अॼु खां 7 साल अॻु 5 अगस्त 2019 ते भारतीय हुकूमत हिकु तरफ़ो क़दम खणंदे वालायरल कश्मीर जी ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़तम कई हुई. सदर आसिफ अली सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कश्मीरी अवाम से बंदी जो इज़हार. योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से सदर आसिफ अली सरदारी है दक्षिण एशिया में जटादार अमन जो क़याम कश्मीर मसले के हल से जुड़ियल है. भारत जहा एक तरफा कदम आलमी कानून की भजकड़ी अड़ा कदम कश्मीर की कानूनी हैसियत खत्म नथा कर सकन. पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इखलाकी सियासी ए सिफारती वाद जारी रख. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 अगस्त 2019 से भारत कश्मीर की आइनी ए कानूनी हैसियत तब्दील करण की कोशिश कई. भारतीय कदम आलमी कानून ए सलामती काउंसिल के ठहराव की भजकड़ी है. दक्षिण एशिया में अमन ए इस्तेकाम लाए कश्मीर मसले जो हल जरूरी है. पाकिस्तानी हुकूमत ए कौमी कश्मीरी अवाम से गड बीठल है. मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फजाई ए बहरिया के सरबराहन जो योम इस्तेसाल से वालायरल कश्मीर के अवाम से यकजहती जो इजहार. वालायरल कश्मीर में भारतीय फौज के घेराव इंसानी हकन की संगीन भजकड़ियन ए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के कब्जे से गंती जो इजहार. वालायरल कश्मीर में भारतीय फौज हथा शहीद थन्दड़न के भेटा पेश. ISPR मूजिब कश्मीर मसले जो हल कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशन ए सलामती काउंसिल के ठहराव मूजिब होने घुर्जे. भारतीय चिड़ डियारींदड़न बयान ए जारहाणो अमल खत्े में अदम इस्तेकाम जो सबब बणजी रो है. अवाम ए पाक फौज कश्मीरियन की आज़ादी के जायज ए हकीकी जुदोजहद में गड बीठल है. वालायरल कश्मीर जो अवाम पैंजन हकन लाए मजबूती से बीठल है. भारतीय कदम आलमी कानून सलामती काउंसिल ए कश्मीरी अवाम की उम्मीदन से हमलो आन. पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दक्षिण एशिया में अमन ए इस्तेकाम कश्मीर मसले के हल से गंढियल है. वडे वजीर मुराद अली शाह सिंध जो अवाम कश्मीरियन से गड है. भारत कदम वालायरल कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा कर सकन. सीनियर वजीर शजील नामेमन योम इस्तेसाल कश्मीर दक्षिण एशिया की तारीख जो भारतीय रियासती जबर ए इंसानी हकन जो भजकड़ियों कश्मीरी अवाम के जज्बे के कमजोर नथियों कर सकन. योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में रैलियों ए तकरीबों. कराची में सूबाई वजीर सईद खानी की अगुवाणी में रैली कढ़ी वही. हैदराबाद डिवीजन के टट्टो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान टंडो लयार मिटियारी जिले के नंढन वडन शहर में रैलियों. पीरपुर खास उमरकोट ए थरपारकर जिले के नंढन वडन शहर में भी योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से रैलियों कढ़ी वयं. नवाबशाह सांगड़ ए नौशेरो फिरोज जिले के भी नंढन वडन शहर में कश्मीरियन से एके जो इजहार किया वो. सक्कर खैरपुर ए घोटकी जिले में भी रैलियों कढ़ी वयं. लाड़काणो कंबर शराबकोट कश्मोर एटकंदकोट जैकबाद ए शिकारपुर में भी रैलियों कढ़ी वयं. सिंध काबीना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट की नए सिर से जोड़ जक करण की मंजूरी दई छी। वे वजीर की सदारत हेठ सूबाई काबीना जो इजलास, सूबाई वजीर सलाहकार लागापियल अमलदार की शिरकत, पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेस लाए 2026-27 की बजट मंजूर, 272,30,00,000 रुपये की ग्रांट भी मंजूर, दहशतगर्दी टोड़ एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दिनी वही, बहराण हाईवे टोल उगाड़ वारे फैसले की मंजूरी दिनी वही, पोरियतन के घट में घट उजरत 40,000 मां वधाए 43,000 रुपया करण की मंजूरी दिनी वही। बादल शाह चयो आए त नयू उजरतू सिंध में कायम समूरियों सनअतन ते लागू हुंदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठ बिजली विराईंदड़ कंपनी की निजकारी बाबत इजलास, वज़ीर आज़म की निजकारी वे अमल में आलमी सीड़पकार की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत, निजकारी कमीशन में सुधारण वो कम भी महीने में मुकम्मल करण जो हुक्म। शहबाज शरीफ चाहिए बिजली विराईंदड़ कंपनी की निजकारी के शफाफ बनाए वे, निजकारी में वाइफेदार हकन जो खास तौर से ख्याल रखो वे, आलमी माहिर जो भी खिदमतू हासिल कई वन। उर्दन में बैतुल मुक़दस बाबत मुस्लिम मुल्क के परेही वज़ीर की कॉन्फ्रेंस, बैतुल मुक़दस समेत फलस्तीनियन की जमीन घर से कब्ज़न की मसम्मत, नायब वज़ीर आज़म साग़िर ख़िताब कंदे बैतुल मुक़दस में इसराइली जारियत आलमी कानून खिलाफ़ है।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैन साथ
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: Nation.
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
0: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: लिख कर रिकमेंड बातें तेरी दिल के ना देती मेरे गैन न करूँ तुझे ब्लॉक न करूँ तुझे बैन तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान ऐं ईरान सरहदी वापार खे हथी ॾियण तोड़े 24 कलाक सरहद खुलियल रखण लाइ सहूलियतूं वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। बहितर लॉजिस्टिक्स ऐं कस्टम्स तरीक़ेकार में बि हमाहंगी आणण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म सां ईरान जे वापार वारे वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक जी सरप्राही में 6 रुकनी वफ़द जी मुलाक़ात। शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में अमन लाइ पंहिंजूं मुख़लिसाणियूं कोशिशूं जारी रखंदो। ईरानी सदर सां ताज़ो ई ख़िते में अमन जे क़याम ऐं पाक ईरान लाॻापन ते सुठी ॻाल्हि ॿोल थी। पाकिस्तान पंहिंजे बहितरीन पाड़ेसरी बिरादर मुल्क ईरान सां लाॻापन खे क़दर जी नज़र सां ॾिसे थो। उमीद आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान विच में $10 अरब जे बितरफ़े वापार जो हदफ़ हासिल कयो वेंदो। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक पाकिस्तान जी सिफारती कोशिशनि जी वाखाण कंदे चयो त ईरान पाकिस्तान सां इक़्तिसादी ऐं वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे। ईरान अपने हुर्मुज बाबति ओमान सां वाइदे में देर जो ज़िमेवार अमरीका खे करार ॾेई छॾियो। ईरानी अख़्तियारनि मूजिब ओमान सां वाइदे में देर जो कारण अमरीकी मुदाख़लत ऐं सदर ट्रंप जूं धमकियूं आहिनि। जेसिताईं अमरीकी हमले जो ख़तरो बरक़रार रहंदो तेसिताईं अपने हुर्मुज बाबति वाइदे ते अॻभराई मुमकिन न हूंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जल्द अपने हुर्मुज खुली वेंदो। ॿी सूरत में ईरान खे ख़तरनाक हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अपने हुर्मुज जल्द न खुलियो त ईरान ते वॾो हमिलो कयो वेंदो। अपना हुर्मुज बाबति शुरूआती मुआदो अॼु थियण जा इम्कान। शुरूआती मुआदे तहत अपना हुर्मुज खे 7 ॾींहनि लाइ बिना फीस जे खोलियो वेंदो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्ज़्यूस जी दावा एक्ज़्यूस मूजिब मुआदे सां अपना हुर्मुज ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। हुर्मुज जे उत्तर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। ईरान मंज़ूरी जो अमल मुकमल करे वरितो आहे। अमरीकी अख़्तियारियूं अॼु मुआदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबब अमरीकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड जा 80% इंटरसेप्टर ख़तम थी विया। अमरीकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिबि अमरीकी पेट्रियाट इंटरसेप्टर्स जो बि अधु ज़खीरो इस्तेमालु थी चुको आहे। हथियारनि जे घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमरीकी इतिहादियुनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबबि सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिबि बि दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमरीकी मिसाइल ख़तम थी यमनी हुसैन पारां रेड सी में सऊदी बहरी बेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसैन जे फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार बेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जे बहरी नाकाबंदी बाद 8 बहरी बेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे। पाकिस्तान पारां वालायल बैतुल मुक़दस में इसराइली क़दमनि जी मज़म्मत। इसराइली कब्ज़े जे नापाक मक़सदनि खे क़बूल न करण जोॻो क़रार ॾेई छॾियो। फ़लस्तीन जी आज़ादी लाइ अरब ऐं मुस्लिम मुल्कनि खे गॾिजी कम करण ते ज़ोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उर्दन में वज़ारती इजलास खे ख़िताब कंदे चयो आहे त वालायल बैतुल मुक़दस में इसराइली क़दम आलमी क़ानूननि जी भञकड़ी आहिनि। हू मस्जिद अक्सा में इंतिहा पसंद इसराइलियुनि जे मुदाख़लत जी मज़म्मत कनि था। पाकिस्तान इसराइल पारां गैर क़ानूनी आबादकारियुनि ऐं फ़लस्तीनी इलाइक़नि ते कब्ज़े खे रद्द करे थो। गज़ा में इंसानी सूरतहाल ॾींहों ॾींहुं ख़राब थी रही आहे। माण्हू खुराक ऐं पाणी जी सख़्त खोट खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। वालायल कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत ख़तम करण ख़िलाफ़ ऐं कश्मीरियुनि सां यकजहती जे इज़हार लाइ होम इहतसाल मल्हायो पियो वञे। सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार जे फ़ैसिले ऐं कश्मीरियुनि सां एके जे इज़हार लाइ रैलियूं ख़ासि तक़रीबनि जो बि अहतमाम कयो वियो। 1 मिंट जी ख़ामोशी बि इख़्तियार कई वई। अॼु खां 7 साल अॻु 5 अगस्त 2019 ते भारतीय हुकूमत हिकु तरफ़ो क़दम खणंदे वालायल कश्मीर जी ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़तम कई हुई। सदर आसिफ अली सरदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कश्मीर अवाम सां वधी जो इज़हार। योम इस्तेसाल कश्मीर जे मौक़े ते सदर आसिफ अली सरदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में जटादार अमन जो क़याम कश्मीर मसइले जे हल सां जुड़ियल आहे। भारत जा हिकु तरफ़ा क़दम आलमी क़ानून जी भजकड़ी आहिनि। अहिड़ा क़दम कश्मीर जी क़ानूनी हैसियत ख़तम नथा करे सघनि। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जी इख़लाक़ी सियासी ऐं सिफारती हिमायत जारी रखंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त 5 अगस्त 2019 ते भारत कश्मीर जी आइनी ऐं क़ानूनी हैसियत तब्दील करण जी कोशिश कई। भारती कदम आलमी कानून ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ जी पजकड़ी आहिनि। ॾखण एशिया में अमन ऐं इस्तेकाम लाइ कश्मीर मसइले जो हल ज़रूरी आहे। पाकिस्तानी हुकूमत ऐं क़ौमी कश्मीरी अवाम सां गॾु बीठल आहिनि। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फजाई ऐं बहरिया जे सरबराहन जो योम इस्तेसाल ते वालर अल कश्मीर जे अवाम सां यकजहती जो इज़हार। वालर अल कश्मीर में भारतीय फ़ौज जे घेराव, इंसानी हक़नि जी संगीन भदकड़ी ऐं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जे कब्ज़े ते गणतीअ जो इज़हार। वालर अल कश्मीर में भारतीय फ़ौज हथां शहीद थींदड़नि खे भेटा पेश। ISPR मूजिबि कश्मीर मसइले जो हल कश्मीरी अवाम जी ख़्वाहिशनि ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ मूजिबि हुअणु घुरिजे। भारतीय चिड़ ॾियारींदड़ बयान ऐं जारियाणो अमल ख़िते में अदम इस्तेकाम जो सबबु बणिजी रहियो आहे। अवाम ऐं पाक फ़ौज कश्मीरनि जी आज़ादी जे जाइज़ ऐं हक़ीक़ी जिदोजहद में गॾु बीठल आहे। वालर अल कश्मीर जो अवाम पंहिंजनि हक़नि लाइ मज़बूती सां बीठल आहे। भारतीय कदम आलमी कानून सलामती काउंसिल ऐं कश्मीरी अवाम जी उमीदनि ते हमिलो आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में अमन ऐं इस्तेकाम कश्मीर मसइले जे हल सां ॻंढियल आहे। वॾे वज़ीर बादल शाह चयो त सिंध जो अवाम कश्मीरियुनि सां गॾु आहे। भारत कदम वालर अल कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सघनि। सीनियर वज़ीर शजील नामेमण चयो त योम इतसाल कश्मीर ॾखण एशिया जी तारीख़ जो कारो ॾींहुं आहे। भारतीय रियासती जबर ऐं इंसानी हक़नि जूं वधकड़ियूं कश्मीरी अवाम जे जज़्बे खे कमज़ोर नथियूं करे सघनि। योम इस्तेसाल कश्मीर जे मौके ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं तकरीबूं। कराची में सूबाई वज़ीर सईद ग़नी जी अॻुवाणी में रैली कढी वई। हैदराबाद डिवीज़न जे ठट्टो, सजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार, बटियारी ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं। पीरबुख़ास, उमरकोट ऐं थरपारकर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि योम इस्तेसाल कश्मीर जे मौके ते रैलियूं कढियूं वयूं। नवाबशाह, सांगड़ ऐं नौशेरो फिरोज़ ज़िले जे बि नंढनि वॾनि शहरनि में कश्मीरियुनि सां एके जो इज़हार कयो वियो। सखर, खैरपुर ऐं घोटकी ज़िले में बि रैलियूं कढियूं वयूं। ॾाॾकाणो, कंबर, शिदाकोट, कश्मोर, एटकनकोट, जेकबाद ऐं शिकारपुर में बि रैलियूं कढियूं वयूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2-3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मौजूदा निज़ाम के नाना पियो वञे ऐं हुकूमत पंहिंजो आइनी मुदो यानी 5 साल पूरा कंदे। वज़ीर आज़म खे सलाह ॾींदासीं त काबीना जे समूरनि वज़ीरनि जी कारकरदगीअ जो जाइज़ो वठे। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ॻाल्हि ॿोल। मोहसिन नक़वी चयो त जिन जिन माण्हुनि चयो त मूं 30 सालनि जो सफ़र 3 सालनि में तय कयो उन्हनि जी बि महिरबानी। पाकिस्तान ऐं ईरान सरहदी वापार खे हथी ॾियण तोड़ी 24 कलाक सरहद खुलियल रखण लाइ सहूलियतूं वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। बहितर लॉजिस्टिक्स ऐं कस्टम्स तरीक़ेकार में बि हमहंगी आणण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म सां ईरान जे वापार वारे वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक जी सरबराही में 6 रुकनी वफ़द जी मुलाक़ात। शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान ख़ते में अमन लाइ पंहिंजूं मुख़लिसाणियूं कोशिशूं जारी रखंदो। ईरानी सदर सां ताज़ो ई ख़ते में अमन जे क़याम ऐं पाक ईरान लाॻापनि ते सुठी ॻाल्हि ॿोल थी। पाकिस्तान पंहिंजे बहितरीन पाड़ेसरी ब्रादर मुल्क ईरान सां लाॻापन खे क़दर जी नज़र सां ॾिसे थो। उमेद आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान विच में $10 अरब जे बितरफ़े वापार जो हदफ़ हासिल कयो वेंदो। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक पाकिस्तान जी सिफारती कोशिशनि जी वाखाण करे चयो त ईरान पाकिस्तान सां इक़्तिसादी ऐं वापारी लाॻापनि खे वधीक हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे। ईरान अपनाए हुर्मुज़ बाबति उमान सां माहिदे में देर जो ज़िमेवार अमरीका खे करार ॾेई छॾियो। ईरान इख़्तियारनि मूजिबि उमान सां माहिदे में देर जो कारण अमरीकी मुदाख़लत ऐं सदर ट्रंप जूं धमकियूं आहिनि। जेसिताईं अमरीकी हमले जो ख़तरो बरक़रार रहंदो तेसिताईं अपनाए हुर्मुज़ बाबति माहिदे ते अॻभराई मुमकिन न हूंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जल्द अपनाए हुर्मुज़ खुली वेंदो। ही सूरत में ईरान खे ख़तरनाक हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अपनाए हुर्मुज़ जल्द न खुलियो त ईरान ते वॾो हमिलो कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जीए FM 90.8।